0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य।

Sumita Drumada la Shobhini Suhasini Sumadura Bhashini

ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, सत संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून सन 2026 दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

एफएमएन 101.8 MHz पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम नन्हे जैसलमेर।

नन्ही जैसलमेर कार्यक्रम सुनने वाले सभी नन्ही साथियों का आपके अपने कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। और लंबे समय बाद आपसे मुखातिब होने, आपसे कुछ बातें करनी, लेकिन हाजिर हूँ आपका अपना कार्यक्रम नन्ही जैसलमेर और मैं हूँ आपकी रेडियो सखी रेडियो फ्रेंड, आपकी रेडियो दीदी प्रीति भाटिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। अच्छा, बातें तो मैं आपसे अक्सर करती रहती हूँ, बहुत सारी। आज की बात कुछ अलग है, मुझे कुछ ज़रूरी जानकारी भी आपके साथ साझा करनी है। और आपकी छुट्टियां कैसी चल रही है, उसमें क्या बेहतर किया जा सकता है, उस मुद्दे पर भी आपसे बात करनी है। लेकिन एक और बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको एक बढ़िया सी कहानी सुना दूँ और उस कहानी से शायद हम कुछ सीख पाएँ, कुछ समझ पाएँ। तो बात कुछ ऐसी है कि इस दुनिया में ना हर कोई अपने अपने तरीके से ज़िंदगी की परिभाषा बताता है। हर कोई कहता है ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, सबकी अपनी सोच होती है। पर दोस्तों, मैं कुछ अलग मानती हूँ कि ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ आपके सबसे ज़्यादा काम आती है तो वो है बुद्धि। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार अकबर के दरबार में किसी मुद्दे पर हो रही थी चर्चा कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ताकतवर है, मजबूत है, काम की है। किसी ने कहा तलवार, किसी ने कहा भाला, किसी ने कहा सेना, किसी ने कहा धन। पर बीरबल ने कहा जहाँ पना, सबसे ज़्यादा काम की जो चीज़ है तो वो है बुद्धि। ऐसे में सारे दरबारी भिड़ गए। उन्होंने कहा अच्छा, ऐसा है, सिद्ध करके बताओ। अगले ही दिन हुक्म होता है और छोड़ दिया जाता है बीरबल को एक जंगल में, जहाँ अलग अलग तरह के जंगली जानवर हैं। और सामने से एक भड़का हुआ, खुला छोड़ा हुआ हाथी आता है, भाग के पूरी रफ्तार अकबर की तरफ, बीरबल की तरफ आता है, सॉरी बीरबल की तरफ आता है। अकबर की तरफ से जितने भी सैनिक थे वो देखने लग गए कि क्या करा जाए, कैसे करा जाए, कैसे, अभी हार जाएगा, मर जाएगा, पछाड़ दिया जाएगा, अब रोएगा, अब पता चल जाएगा कि हम सही थे, वो गलत थे। जो ज़िंदगी में भी आमतौर पर होता है, वो सारे दरबारियों की तरह आपकी इर्द गिर्द ऐसे कई सारे रिश्तेदार, दोस्त, कहने को नातेदार, पर उसी जलने भुनने वाले लोग होते हैं ना, वैसे ही। अब बीरबल का भी दिमाग इस समय काम नहीं करा, बोला अरे गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, आखिर मैं क्या करूं। तभी देखा एक मरा हुआ कुत्ता, उसका शव पड़ा था जमीन पर। बीरबल ने आप देखा न था, उस कुत्ते के शव को उठाया और गोल गोल जोर से घुमाया और फेंक दिया हाथी की तरफ। हाथी बहुत ताकतवर था, बहुत रफ्तार में आ रहा था, बहुत जोश में था। पर जब उसने अपनी तरफ अनायास से आती हुई चीज देखी तो उसे लगा रहे थे पता नहीं क्या रहा है, वो हड़बड़ा गया और हड़बड़ा के वो डाइवर्ट हो गया। और क्या था, बीरबल जीत गया। तो जब जिंदगी में अनायास हड़बड़ाहट में कोई आपके साथ गलत कर दे, या फिर कोई समस्या पे समस्या पे समस्या उनका ढेर आपकी तरफ आने लगी, हिम्मत मत हारिए। जो भी आपके पास है, वॉट एवर यू हैव, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, जो भी चीज़ें आपके पास है, उनका उपयोग

और देखिएगा आप बीरबल की तरह जीत जाएंगे। तो बस ये छोटी सी कहानी मुझे आज आपके साथ शेयर करनी थी। तो प्यारे बच्चों, हम इससे क्या सीखते हैं, हम इससे क्या समझते हैं? देखिए, बहुत मुद्दे की बात ये है कि जिंदगी है ना, वो अगले पल क्या करवट लेगी हम नहीं जानते। क्या होगा अगले घंटे में, अगले दिन क्या होगा, दो साल बाद क्या होगा, इट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चीज अगर कोई हमारे पास होती है तो वो होती है बुद्धि। आपसे कोई चुरा नहीं सकता, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, जो आपको बताती है कि हर मुश्किल हालात में क्या करना है, कैसे हारना नहीं है और कैसे आगे की तरफ बढ़ना है और बढ़ना है और बढ़ना है। तो जिंदगी में अगर कभी आपको मौका मिले किसी की तरह कुछ बनने का, तो बीरबल की तरह बनिएगा। हजार लोग एक तरफ पर अकेला बीरबल एक तरफ, और अपनी बात को सही रूप में सिद्ध करने का भी दम रखता है। तो ऐसी ढेर सारी बातें मैं करूंगी बच्चों आपके साथ, लेकिन चलती हूँ, सुनाती हूँ आपको आप ही की तरह मीठा सा, प्यारा सा, मधुर सा एक।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जलवा डाला।

0: और मैंने साथियों हम एक बहुत मीठा सा गीत सुना, इसके बाद मैं चलती हूँ, सुनाने आपको जरूरी ही जानकारी।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो नन्हे साथियों, आपको भी अवेयर रहना है, हर स्थिति में जागरूक रहना है। हमारे इर्द गिर्द आसपास क्या चल रहा है, कोई नई सरकारी योजना आ रही है, कुछ ऐसा जो हमारे काम का है या हमारे किसी जुड़े हुए व्यक्ति के काम आता है, हमें उस बारे में अपडेट रहना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जिसके बारे में आपने सुना होगा पर आपने शायद कभी गौर करा हो ना करा हो या आपको ज़रूरी ना लगा हो, आपने सुना है जब हम दुनिया में डोनेट करने की बात करते हैं, दान की बात करते हैं, तो अक्सर लोग चीज़ों का, कपड़ों का, पैसों का, इन चीज़ों का दान कर लेते हैं ना। पर एक और चीज़ जो बहुत काम की है, जिसका दान किया जाना चाहिए और जो दान लेने वाले और देने वाले दोनों के काम की है, पर उस बारे में हम इतने जागरूक नहीं हैं। मैं बात कर रही हूँ रक्तदान की, ब्लड डोनेट करने की। रक्तदान महादान जीवन का सबसे अनमोल उपहार है। तो श्रोताओं, मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि आप कल्पना कीजिए, अगर हमारे हॉस्पिटल में, हमारे अस्पताल में कोई हमारा परिचित, कोई नोन या फिर कोई और मरीज सिर्फ जीवन और मृत्यु के बीच में बहुत बड़ा संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, और सिर्फ खून की कमी की वजह से किसी के प्राण चले जाएं, तो सोचिए आप ब्लड कितना ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के लिए ब्लड बैंक में ब्लड नहीं होता और हमें कोई डोनेट करने के लिए डोनर भी नहीं मिलता। डॉक्टर के पास इलाज होता है, दवाइयाँ होती हैं, लेकिन कई बार रक्त नहीं होता। ऐसे में किसी अजनबी द्वारा किया गया रक्तदान उस व्यक्ति के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। तो रक्त एक ऐसी चीज़ है ना जो किसी फैक्ट्री में नहीं मिलती, आप लेबोरेटरी में इसे नहीं बना सकते हैं, कुछ केमिकल्स को मिला के आप नहीं बना सकते हैं, उसका स्रोत हम और आप हैं। एक यूनिट रक्त 3 लोगों तक की मदद कर सकता है और हमारा छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी कोशिश लगभग 3 परिवारों को बचा सकती है। रक्तदान करने से किसी का जीवन तो बचता है, पर आप जानते हैं अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो आप पर कोई नेगेटिव असर नहीं रहेगा। हम कुछ ही महीनों में वापस से उस पोजीशन में आ सकते हैं कि जब हम ब्लड डोनेट कर पाएं। तो सिर्फ रक्तदान रक्त का दान नहीं, एक आशा का दान है, एक मुस्कान का दान है, उम्मीद का और जीवन का दान है। मुझे छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक युवक ने पहली बार रक्तदान किया था। कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि जो ब्लड उसने डोनेट किया है ना, उससे एक बच्चे की जान बच गई थी। तो उसे एहसास हुआ कि किसी और की धड़कनों में आज उसका खून जो है वो बह रहा है। तो आइए बच्चों, हम सब मिलकर के एक संकल्प लेते हैं आज के दिन कि हम रक्तदान अवश्य करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि रक्त की हर एक बूंद किसी की जिंदगी की उम्मीद है। रक्तदान अपने आप में जीवन का दान करना है, तो कोशिश करें कि ज़रूर रक्तदान करें और जीवन में जब भी मौका मिले किसी की मदद करने का तो पीछे ना हटें, क्योंकि विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल 14 जून यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि स्वैच्छिक रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीक्वेंटली ब्लड को डोनेट करते रहते हैं हर 2 महीने 3 महीने के समय के बाद, और उनके द्वारा जो रक्त का दान किया जाता है वो ज़रूरतमंदों को बहुत बड़ा सहयोग देता है। तो सुरक्षित रक्त की आवश्यकता के बारे में भी हम लोगों को जागरूक करें। आप जानते हैं 14 जून की तारीख नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चुनी गई है, जिन्होंने मानव रक्त समूह ABO की खोज की थी। तो बस आपके लिए यही जरूरी जानकारी नहीं है, इसके अलावा

0: भी है तू।
1: तो प्यारे बच्चों, एक बहुत मीठा सा गीत सुना हमने कि चंदा है तू मेरा, सूरज है तू। देखिए, हर माता पिता के लिए जो उनका बच्चा होता है, जो उनकी संतान होती है, वो अक्सर चांद और सूरज की तरह होती है। मतलब हर दिल अजीज होती है। और हमेशा हम कहते हैं ना, आंखों की तारे की तरह हमें लगता है कि हमारे बच्चे हमें बहुत प्यारे लगते हैं। अब सोचिए कितना अच्छा रिश्ता होता है ना माता पिता का अपनी संतान के साथ, कि वो दुनिया में कहीं भी घूम के आए, लेकिन उन्हें चैन और आराम तभी मिलता है जब अपनी संतान के गले लगते हैं या उसके पास बैठते हैं। पर आप जानते हैं कि इन छुट्टियों में उन्हीं संतान को, उन्हीं बच्चों को उन्हें बहुत ज़्यादा डांटना पड़ता है ना। आपने भी डांट खाई होगी छुट्टियों में, पक्के से आपने डांट खाई होगी। अब आप बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि छुट्टियों में आपको घर पर बैठना अच्छा नहीं लग रहा, आपका दिल करता है बार बार बाहर जाए, या मम्मी चिल्लाती रहती है या पापा ऐसे कहते हैं, क्यों? मम्मी पापा हमारे दुश्मन तो होते नहीं है ना, बच्चों में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं, हमारी केयर करते हैं।

हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, पर होता यह है कि जब वो हमें कुछ समझाने की बताने की कोशिश करते हैं तो हम अनसुना कर देते हैं। आप खुद सोचिए कि छुट्टियाँ क्यों होती है, ये हॉलीडेज का वैकेशन का कॉन्सेप्ट क्यों बना होगा, ताकि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो हमारा रूटीन है, उसमें से हमें थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए और हम दोबारा से जब अपने काम पर आए तो रिफ्रेश होकर के आए। ऑफिसर्स में संडे की छुट्टी होती है, व्यापारी भी अक्सर एक आध दिन अवकाश ले लेते हैं, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है। अब बच्चे जो पढ़ते हैं लिखते हैं उनके लिए भी इस तरह का एक प्रयोजन रखा गया कि भाई हम बच्चों को छुट्टी दे देते हैं। क्यों देते हैं छुट्टी? ताकि बच्चे आराम से आगे पढ़ पाए। आपको अच्छी खासी लंबी छुट्टी मिलती है, पर होता यह है कि बच्चे पढ़ने की बजाय सब कुछ काम करते हैं, देर रात तक मोबाइल चलाना, जागते रहना, हुड़दंग करना, हल्ला मचाना, घर वालों का कहना नहीं मानना, सुबह देर तक सोते रहना या खेलने चले जाना तो समय पर घर नहीं आना, ढंग से खाना नहीं खाना, पूरा रूटीन डिस्टर्ब कर देना, अपना सामान यहाँ वहाँ फेंकना और सबसे सबसे बड़ी बात अपनी छुट्टियों का हॉलीडे होमवर्क नहीं करना, और जब छुट्टियाँ कम बचे तो चिल्लाना आनंद फानंद में, यहाँ वहाँ घूमना तमाशे करना। अरे हम ये बात कब समझेंगे कि छुट्टियाँ क्यों बनी हैं, छुट्टियाँ क्यों होती हैं? क्या छुट्टियाँ समय गंवाने और बिताने के लिए होती हैं, पड़े रहने के लिए, सोने के लिए होती हैं, या छुट्टियाँ इसलिए होती हैं कि हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएँ लेकिन कुछ नया सीखें? कई चीज़ें, कई टास्क ऐसे हैं कि जो आप अपने स्कूल में या आपका वापस आके होमवर्क करना या नहीं करना या ट्यूशन जाना या घर पर पढ़ना, इसके बीच में आप नहीं कर सकते हैं। कुछ खेल ऐसे होते हैं या कुछ क्लासेज आपको चाहिए होती है, स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है, कुछ नया सीखना होता है, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है, वो हम नहीं कर पाते इसलिए छुट्टियाँ होती हैं। अब हम छुट्टियों को ऐसे ही गंवा देंगे तो इसे समझदारी तो नहीं है ना बच्चों। तो आप छुट्टियों का सदुपयोग करें, अपने बड़ों की बात सुनें, समझें, माने, वो जो भी कह रहे हैं तजुर्बे के साथ कह रहे हैं। और मैं आपसे और बातें करूँगी, तब तक चलिए सुनते हैं, गुनगुनाते हैं मीठा संगीत।

0: चिट्ठी आती है, मुझे जाती है,
1: घर कब आ

तो बच्चों, मैंने आपको सुनाया था एक बहुत मीठा प्यारा गीत फिल्म बॉर्डर का। आप समझ सकते हैं कि घर आना कितनी बड़ी बात होती है। कई ऐसे हमारे फौजी भाई बहन होते हैं जो बहुत दूर दूर बैठे हैं, सरहदों की रखवाली कर रहे हैं, दास्ती कर रहे हैं, और उनके लिए छुट्टी मिलना मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो निभा रहे होते हैं। और जब वो छुट्टियों में अपने घर आते हैं ना, तो ना केवल अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ कुछ अच्छा समय बिताते हैं, बल्कि बहुत सारा पेंडिंग काम होता है, किसी से मिलना होता है, कोई सरकारी दफ्तरों के काम है, या कुछ घर में नया बनवाना है, पिताजी को हॉस्पिटल में दिखाना है, या किसी फैमिली मेम्बर की अगर सर्जरी हो रही है, कोई शादी ब्याह हो रहा है, कुछ रस्मों रिवाज हैं, सब करते हैं। तो आप सोचिए, देखा जाए तो उनके लिए छुट्टी नहीं होती, क्योंकि अपने वर्क प्लेस पर वो जहाँ आते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के पास, वहाँ पे भी वो काम करते हैं। यही मनुष्य जीवन है, चलते रहना, चले बेटी चले बेटी। देखिए, आराम हराम है। हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी जो थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री, वो ही कहते गए हैं। तो आपको जब ये आराम के पल मिले हैं ना, तो आप इसे यूँ ही ना गंवाएं, बल्कि सुनियोजित तरीके से अपनी छुट्टियों का सदुपयोग लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आज आपके पास जो चीज़ें हैं वो कल भी इसी रूप में रहे। कल हम समय के लिए तरस जाएंगे और आज समय है तो उसे गंवा रहे हैं, तो ये बिल्कुल समझदारी नहीं है ना बच्चों। तो बस घड़ी की सुइयां कह रही है कि आपकी रेडियो दीदी कृपया आपसे इजाज़त ले ले, अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मिलूंगी, ढेर सारी बातें करूंगी। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और मेरी तरफ से कबूल कीजिए प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद।

0: एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 12:30 हुए हैं ना। आइए सुनते हैं नमस्ते जैसलमेर कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे सरकार की 12 वर्ष की उपलब्धियों तथा खेल बचाओ अभियान पर कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री दीपक चतुर्वेदी से तरुण शर्मा की बातचीत।
1: आजादी का अमृत महोत्सव।

0: नमस्ते जैसलमेर सुनने वाले सभी श्रोताओं को तरुण का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम सब जानते हैं हमारा देश प्रगति की राह पर है और हमने कई हद तक उन ऊंचाइयों को छू लिया है, जिन संकल्पों को हमने सिद्ध किया है, जिन्हें जिनके सपने हमने देखे हैं, जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के सपने हमने देखे हैं, उन लक्ष्यों पर हम आज भी अडिग हैं और हमने कई लक्ष्यों को प्राप्त भी कर लिए हैं। यानी संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने में हमें ज्यादा समय नहीं लगा। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं सरकार के पिछले 10 वर्ष यानी जो देश का जागरण काल चला है उसके बारे में। हमने हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कई योजनाओं को लागू कर उस पर कार्य किया, उसको इम्प्लीमेंट किया और इसमें सरकार के साथ साथ सभी नागरिक जनों का पूर्ण रूप से सहयोग रहा। चाहे हम शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, आत्मनिर्भरता की बात करें, चाहे हम किसानों के लिए खूब सारी योजनाओं की बात करें, हमने हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करते हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर पिछले 12 वर्षों में देश को विकसित मार्ग की श्रेणी में उच्च स्तर पर लाए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव यानी वर्ष 2047 में जब हम आजादी के 1 वर्ष पूरे हो जाएंगे और उस 1 वर्ष को हम जब मनाएंगे, तब तक हमें लगेगा कि जो संकल्प हमने इस राह पर लिए हैं आज वो पूर्ण हो चुके हैं, यानी हम सिद्धि तक पहुंच चुके हैं। सरकार के 12 वर्षों के अलावा साथ ही आज हम बात करेंगे हाल ही में खेत बचाओ अभियान, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अन्नदाताओं की आय बढ़ाने, खेती की लागत को कम करने और मिट्टी की सेहत को सुधारने के लिए 1 जून 2026 से ही 30 जून 2026 तक पूरे देश में खेत बचाओ अभियान को शुरू कर दिया गया है। श्रोताओं, पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस सिद्धांतों से प्रेरित होकर भारत में काफी परिवर्तन आया है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, इनके कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की है। भारत साल के विश्वास के साथ, भारत साल के विकास के साथ, जन कल्याण के साथ, गरीबों के कल्याण के साथ सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पिछले 12 वर्षों में गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई प्रमुख योजनाएं लागू की है। गरीबों के लिए आवास मोदी सरकार का मुख्य फोकस रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राज्यों को 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित करना, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में गरीब कल्याण अन्न योजना जहां देश भर में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को आज भी मुफ्त अनाज उपलब्ध हो रहा है, विश्व के सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान कर रही है, वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र किफायती दरों पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध करा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 10 करोड़ 82 लाख लाभार्थियों ने कैशलेस उपचार का लाभ उठाया। आगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त में LPG गैस कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें वे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधनों से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों से मुक्त हो गए। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को हम कैसे भूल सकते हैं, जो अब तक स्ट्रीट वेंडरों को 1 करोड़ 12 लाख से अधिक ऋण वितरित कर चुकी है। भारत का सामाजिक सुरक्षा दायरा 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64% से अधिक हो गया है, जिससे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लगभग 94 करोड़ नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं, जो समावेशी विकास और कल्याणकारी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। तो आइए इसी संबंध में, यानी सरकार के जो जागरण काल चल रहा है देश का, जिसमें सरकार के 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उनकी कुछ योजनाओं और सबसे महत्वपूर्ण खेत बचाओ अभियान पर आज हम बात करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर के अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक श्री दीपक चतुर्वेदी जी से। श्रोताओं नमस्कार। समय समय पर हम आकाशवाणी के माध्यम से आकाशवाणी स्टूडियो में विभिन्न कलाकारों, महानुभावों, अधिकारियों, कर्मचारियों, विशेषज्ञों को आमंत्रित करते रहते हैं और उनसे वो जानकारियां लेकर आप तक पहुंचाते हैं जिनसे हम सभी को लाभ प्रदान होता है। सरकार की ऐसी विभिन्न योजनाएं जो समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, अपडेट होती रहती है, उनकी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। तो नमस्ते जैसलमेर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को एक बार फिर से हम नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अन्नदाताओं की आय बढ़ाने, खेती की लागत को कम करने और मिट्टी की सेहत को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने 1 जून से 30 जून 2026 तक पूरे देश में खेत बचाओ अभियान शुरू कर दिया है। इसी संबंध में आज हम बातचीत करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर से वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष श्री दीपक चतुर्वेदी जी से। दीपक जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जैसलमेर कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दीपक जी, हम बात करेंगे इस अभियान के बारे में जो खेत बचाओ अभियान है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे इसी अभियान को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है और इसका उद्देश्य क्या है।
1: ये जो अभियान है, इसका जो मूल उद्देश्य है कि खेत बचाओ। खेत बचाओ का मतलब ये है कि जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं कि लास्ट हमारे जो हरित क्रांति आई, उसके बाद किसानों के एक मन में ये आया कि डीएपी यूरिया का हम जितना उपयोग ज्यादा करेंगे हमारी पैदावार बढ़ेगी, और इस कारण से क्या है कि डीएपी यूरिया का अनावश्यक रूप से अधिक मात्रा में उपयोग ना किसानों के द्वारा किया जाने लगा।
0: अच्छा।
1: जिसके कारण से क्या है कि जो हमारी जो जमीन है, उस जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो कमजोर पड़ने लग गई। तो जो इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य जो रखा गया है कि हमें खेत बचाना है, मतलब हमें हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है। और उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है तो हमने जो ये डीएपी यूरिया का जो हम ना अति यूज कर रहे हैं, उसका हमें संतुलित प्रयोग करने के लिए किसानों को ना जागरूक करना है, ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों और संतुलित ना खाद का उपयोग करें। अब इसके लिए जो ना दृष्टिकोण जो हमने उद्देश्य या जो तकनीकी रखी गई है, उसमें सबसे पहले जैसे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ताकि आपकी मृदा में क्या आवश्यकता है टोटल, जैसे किसी भी फसल को पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमारी जो जमीन में उसमें मूलतः कौन कौन से तत्वों की कमी है, उसके हिसाब से ही हम खाद का उपयोग करें, और जितनी ना कमी है उतनी ही मात्रा का हम उपयोग करें। तो ये किसान भाई कहाँ से जान पाएंगे, जब वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि हमारी जमीन थोड़ी सी है ना कड़ी हो गई है, उसमें जो पोषक तत्व हैं उन्होंने आपस में कंपाउंड बना लिया, तो हमारी जो धरती माता है वो थोड़ी थोड़ी कड़ी होने लग गई है। तो उस कड़ी होने लगी है तो उसको सुधारने के लिए जैसे है हरी खाद है, ठीक है, हरी खाद का किस तरीके से उपयोग करना है, इसी तरीके से प्राकृतिक खेती है, तो प्राकृतिक खेती के द्वारा हम ना इसमें जमीन में हमारे सुधार कर सकते हैं। तो इस विषय को फिर ना इसमें संतुलित किया गया है। और एक ये है कि हमने जो भी करना है तो हमने क्या पैदावार को भी साथ में बढ़ाना है, तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कि ना पौधे को जैसे हर फसल की अलग अलग ना पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो जो हम फसल बो रहे हैं उसके अंदर उस फसल को किस किन किन ना न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उसके ना हिसाब से किसानों को जागरूक करना है। तो मूलतः ये ना उद्देश्य को रखते हुए ना भारत सरकार ने ये अभियान चलाया है और ये 1 से 30 जून तक चलाया जा रहा है। इसमें जहां तक बात करें कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका की, तो कृषि विज्ञान केंद्र की इसमें ये भूमिका है, हम लोगों ने जिस हिसाब से प्लान किया है कि जो भी हमारे जिले के 100 ऐसे गांव चयनित हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा रासायनिक खाद का उपयोग होता है, तो उन ना गांव में से जो ज्यादा जहाँ पे रासायनिक खाद का उपयोग होता है वो 22 ना गांव हम लोगों ने चयनित किए हैं, जिसमें हमारे जो टीम है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वो ना वीक में 5 दिन अलग अलग जगह पे जाते हैं, किसानों को ना जागरूक करते हैं। तो ये है इसका मुख्य उद्देश्य।
0: अच्छा, इसके किसानों को उसमें आपके संस्थान के द्वारा क्या क्या बताया जाएगा परीक्षण में, जैसे मिट्टी परीक्षण की बात करें या कुछ और भी?
1: नहीं, इसमें जैसे मैंने आपको पूर्व में निवेदन किया, जैसे मिट्टी परीक्षण, अब ना जागरूक तो हो गया किसान या ना मिट्टी या ना कि हमें जांच करानी चाहिए, लेकिन उसके सैंपल लेने का तरीका मुख्य महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपका सैंपल सही नहीं है तो रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो वहां जाके ये बताते हैं कि किस तरीके से मिट्टी का सैंपल हमें खेत से लेना है ताकि उस सैंपल से हमारे पूरे खेत का रिप्रेजेंटेशन हो। जनरली क्या होता है, किसान जागरूक भी हो जाता है कि मिट्टी का परीक्षण कराना, और वो कहीं से भी मिट्टी उठा के ले आता है, लैब में ले आता है, फिर उसके हिसाब से उसको अपना परीक्षण करके उस हिसाब से रिपोर्ट दे देते हैं, फिर वो जो अपने फील्ड में अगर वो अप्लाई करता है तो उस हिसाब से उसको रिजल्ट नहीं मिलता। कारण यह कि जब तक अगर आपने सैंपल ही सही नहीं कलेक्ट किया,
0: हाँ,
1: किस तरीके से करना है उसकी तो, पूर्ण विधि है, तो उस विधि को ना हमारे जो वैज्ञानिक है वो वहां जाके बताते हैं। फिर इसी तरीके से जैसे अपनी बात हुई कि ना पोषक तत्व है तो उसका की ना संतुलित होना चाहिए। तो जैसे आज हम अपने ना खरीफ की बात करें तो जैसे मूंग लगाना है हमें, मोट लगाना है, और आपके जैसे ना तिल है, आपके ना मूंगफली है, इसके अलावा आपके कैस्टर उगाते हैं, अरंडी है, कपास है, नरमा, ये मुख्य फसल है। तो हमारे जो वैज्ञानिक है वो जाके ये बताते हैं कि जैसे अगर आप दलहनी फसल उपयोग कर रहे हो तो उसके अंदर आप ना मतलब यूरिया की थोड़ी कम मात्रा की आवश्यकता होती है, बनस्पत हम जो दूसरी फसल लेते हैं इसके इसके अलावा जैसे डीएपी का प्रयोग है, तो जैसे आज हमारी जो भी तेल वाली फसलें हैं चाहे वो ना तिल है या अरंडी है, तो उसमें हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऐसे सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर क्या है, सल्फर होता है, तो सल्फर का मुख्य रोल होता है तेल की मात्रा को बढ़ाना। तो अब ये किसानों को जागरूक तो इन विषयों पे हम लोग करना करते हैं। इसके अलावा कि ना जो बुआई का तरीका, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने ठीक है जैसे फर्टिलाइजर की बात कर ली कि ना इतना डालना चाहिए, लेकिन फर्टिलाइजर को डालना किस तरीके से, बुआई से पहले कौन सा फर्टिलाइजर बुआई से पहले डलेगा, कौन सा फर्टिलाइजर बुआई के बाद डलेगा, कौन सा फर्टिलाइजर ना 25 दिन में डलेगा, कौन सा 50 दिन में, तो इस हिसाब से हमारे वैज्ञानिक ना उनको जागरूक करते हैं। साथ ही अगर अपन जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर के परिप्रेक्ष्य की बात करें, तो यहाँ पे हमारा जल पानी की बहुत ना कमी रहती है,
0: उसका संरक्षण आवश्यक,
1: उसके संरक्षण के लिए भी हम लोग ना हमारे वैज्ञानिक बात करते हैं कि किस तरीके से हम ना जो बरसात का जल है उसको किस तरीके से हम संरक्षित कर सकते हैं, और हमारी जमीन में हम लोग ऐसा क्या करें कि जो हमारे जो जमीन है उसको ना
0: पानी को सुरक्षित
1: जल धारण क्षमता, जिसे कहते हैं जल धारण क्षमता, वो ना बढ़े, तो इस तरीके के ना तरीके उनको सिखाए जा रहे हैं।
0: कुल मिलाकर उन्नत खेती के तरीके जो है हम सिखाएंगे। अच्छा, ये एक इस अभियान को लेकर एक और बात आती है कि किसानों को सीधा लाभ मिलेगा इसे, बहुत फायदा है, तो किस तरह से फायदा होने वाला है किसानों को? खेती के अलावा भी जैसे खूब सारे ऐसे स्कीम्स होती है सरकार की, तो आर्थिक रूप से भी या?
1: नहीं देखो, इस अभियान के जब वैज्ञानिक है ना किसानों से सीधे जुड़ रहा है, उसके गांव में जाकर जुड़ रहा है, तो किसानों को सीधा फायदा मिल रहा है। एक तो वो उन्नत तकनीकी के बारे में जान रहा है, इसके अलावा जो भी सरकार की योजना है, सरकार समय समय पे चला रही है, तो उसके प्रति भी वो लोग है ना जागरूक हो रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि कोई कौशल आधारित कोई प्रशिक्षण है उस पे ना करना है, इसके अलावा जैसे कि ना अपने लागत
0: लागत कम हो,
1: लागत कम कैसे की जा सकती है,
0: घटेगी,
1: घटेगी, अगर जब लागत घटेगी तो किसानों को सीधा फायदा होगा। आज जो इस अभियान के माध्यम में अगर जो मूल केंद्र बिंदु है कि हमें धरती को बचाना है, धरती का तो उर्वरा शक्ति बढ़ानी है, और धरती की अगर खेत की अगर उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो उसके लिए हमें लागत को भी कम करना पड़ेगा।
0: रासायनिक तो, खाद की बात आती है तो उसको भी असंतुलित रूप से जो इसका इस्तेमाल हो रहा है उस पर भी रोक लग सकती है।
1: हाँ, वो तो लगेगी, क्योंकि जो रासायनिक खाद है उसका वो बहुत ही ना जरूरत से ज्यादा और बिना सोचे समझे उपयोग कर रहा है, तो उसके उस पर भी इसकी ना सीधे रोक लगेगी, तो उसका भी जो पैसा बचेगा अल्टीमेट उसका ना फायदा ही होगा उससे।
0: अच्छा, ये वातावरण एटमोस्फेयर की बात करें तो कई जगह का हवा पानी ऐसा होता है, तो उस मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या
1: देखो हाँ, इस अभियान का एक और ये मूल उद्देश्य, क्योंकि जो आने वाला समय हम पिछले 5 साल से 10 साल से देख रहे हैं कि हमारा जो मौसम है वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जितनी समय सर्दी पड़नी चाहिए उतनी सर्दी नहीं पड़ रही, ठीक है, जिस समय गर्मी है ना बहुत ज्यादा पड़नी चाहिए तो उस समय गर्मी कम पड़ रही है, ठीक है, और बरसात भी अनइवन हो रही है, मतलब जैसे आज हो गई उसके एक बरसात कहते हैं ना वर्षा का अंतराल, वो कई जगह कम हो रहा है कई जगह बढ़ रहा है, एक ही दिन में आज है ना 200 mm बरसात हो गई, जबकि ना जैसे जैसलमेर की बात करें कि 160 mm है ना डिस्ट्रिक्ट की एवरेज है ना रेनफॉल थी पहले आज से 5 साल पहले, अब 160 mm पूरे साल में होती थी, अब हुआ एक दिन 200 mm हो गई, तो वो भी किसानों के फायदे के लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन ना अगर वर्षा का अंतराल है वो भी अगर ज्यादा बढ़ गया तो भी किसानों को दिक्कत आ सकती है, तो इन सब चीजों की स्टडी करके कि किस तरीके से लास्ट 5 साल के अंदर जो हमारा मौसम में परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर कौन सी तकनीकी हम किसानों को दें ताकि जो भी हमारी जो मौसम की मार है वो किसानों किसानों के ऊपर ना पड़े, मतलब उसके लिए हो सकता है कि जैसे कि ना कम अंतराल की ना फसलें जैसे जो कि हमारे 60 दिन में पक जाए 70 दिन में पक जाए, ठीक है, ऐसी फसलें
0: या फिर वो मौसम को देखते हुए मतलब कौन सी फसल लेना फायदेमंद होगा,
1: फायदेमंद होगा या उसके ना जो तारीखें हैं उपयोग करने का जो तरीका है, मतलब जब बुवाई का समय है उसमें परिवर्तन करा के, मतलब जो भी कर सकते हैं कम जोखिम हो, तो इस तरीके की चीजें करके हम लोग करना इसमें काम करते हैं।
0: अच्छा, एक तो ये बात आ गई, अब ये हमने प्रैक्टिकल बात की, अब थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव बात करें तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंटल कागजी कार्रवाई ऐसा कुछ उलझन भी है किसानों को लेकर?
1: नहीं नहीं,
0: जैसे कोई ऑनलाइन कोई रजिस्ट्रेशन हो गया, कोई कागजी कार्रवाई होगी, कोई डॉक्यूमेंट
1: नहीं,
0: दस्तावेजों संबंध
1: नहीं, दस्तावेजों के संबंध में ना बहुत अच्छा डिजिटल माध्यम बनाया गया है जिसमें आपको बहुत कम समय में आपके डेटा अपलोड हो जाते हैं, तो ऐसी कोई दस्तावेज के लिए कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं है।
0: लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि पंचायती स्तर को भी इसमें शामिल किया गया है, जैसे आप कृषि यंत्रों का जो है उसमें उनको वितरण किया जाएगा, तो उसमें मतलब कौन सी आपकी टीम और साथ में जुड़ी है, मतलब हम प्रशासन की बात करें
1: तो कृषि विज्ञान केंद्र के साथ कृषि विभाग है, जैसे जो कृषि यंत्रों की ना अनुदान की बात करना हो, मिनी किट की बात करना हो, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें तो कोऑपरेटिव की ना का उत्तरदायी है, फसल बीमा योजना है या जो भी है, ये जो विभाग है ये भी हमारे साथ लगातार काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो ICAR है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उसके वैज्ञानिक भी हमारे साथ इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं ताकि किसानों को संपूर्ण लाभ मिले, जो भी उसकी ना आवश्यकता है और जो वो जानना चाहता है वो उसको गाँव में उपलब्ध हो, इसीलिए ये अभियान चलाया गया।
0: दीपक जी, पिछले 12 से 15 वर्षों की बात करें तो देश का जागरण काल चल रहा है और सरकार के जो 12 वर्ष है इसमें हम यदि किसानों की योजनाओं को लेकर बात करें तो कितना विस्तार हुआ है आज दिन तक में?
1: नहीं, अपन बात करें जैसे ये सरकार 2014 पे आई थी तो कई मिशन जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, उज्ज्वला योजना है, इस तरीके से चलाई थी, लेकिन खेती के लिए भी इन्होंने बहुत सारी योजना चलाई जिसमें अपन जैसे कहते हैं कि है ना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके अलावा आप अगर जैसे करें किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर सकते हैं, कृषि अवसंरचना कोष है उसके बारे में जो भंडारण के लिए, परंपरागत कृषि विकास योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, प्राकृतिक खेती ना योजना है, इसी तरीके से MSP पे भी न्यूनतम ना वो भी चलाया गया, तो इस तरीके से काफी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई।
0: कितना फायदा हुआ इन सभी योजनाओं को अगर हम सम्मिलित निष्कर्ष के रूप में यदि अंतिम में बात करें तो?
1: नहीं, निष्कर्ष के रूप में देखें तो सभी योजना का संपूर्ण लाभ हुआ है, जैसे अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें तो आज ना किसानों को 6,000 रुपये मिल रहे हैं, तो जो उसको आर्थिक रूप से थोड़ा सा संबल बना रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है फसल बीमा योजना, क्योंकि आजकल मौसम का जो परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान ना कृषकों को होता था, लेकिन आज अगर आप बात करें विगत 3-4 वर्षों के अंदर ना किसानों को मुआवजा जल्दी तुरंत ही मिल रहा है, मतलब खरीफ का, खरीफ के नुकसान का जो मुआवजा है वो रबी तक आ जाता है, और रबी में जो नुकसान हुआ है वो खरीफ से पहले आ रहा है, तो जिससे किसानों को बहुत ज्यादा है ना फायदा हो रहा है। इसके अलावा जैसे अगर अपन बात करें केसीसी क्रेडिट कार्ड है, तो उससे भी उसकी है ना पेइंग कैपेसिटी है, क्योंकि किसान के पास एकदम से पैसा नहीं हो पाता, वो अगर अपने ना खेत में कुछ काम करना चाहता है
2: तो लोन के,
1: तो लोन के लिए भागता, तो
2: सस्ती दर पर,
1: सस्ती दर पे लोन मिलने लग गया उसको किसान क्रेडिट कार्ड के लिए। इसी तरीके से जैसे अगर कोई किसान अपना ना प्रोड्यूस है, उस प्रोड्यूस को ना समय पे नहीं मतलब बेचना नहीं चाह रहा है और उसको स्टोर करना चाह रहा है, तो भंडारण
2: के लिए
1: ना सरकार ने योजना चलाई है, तो ये जैसे कृषि अवसंरचना कोष है, तो इसके माध्यम से वो है ना अपना भंडार कर सकता है। इसके अलावा जैसे आज जो बात है, जैसे जैविक खेती की बात है, आपके इस परंपरागत कृषि विकास योजना, इसके अंदर हम जो पुराने समय से जो खेती करते आ रहे थे, जब हमारी जमीन बहुत अच्छी थी, ठीक है, तो हम अपनी जमीन को सुधारने के लिए हम क्या प्राकृतिक खेती है, तो इस प्राकृतिक खेती को भी हम कैसे अपना सकते हैं जो कि हमारी जमीन को भी सुधारे, हमारी लागत को भी कम करे, तो इसका भी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और एमएसपी की तो बात करें तो आज ना डेढ़ से दो गुना, अगर 2014 से आज तक
2: वृद्धि हुई है,
1: और वृद्धि हुई है सभी ना फसलों के अंदर,
2: मतलब कुल मिला के लाभ ही लाभ है।
1: लाभ
2: अच्छा, एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मुझे याद आ रहा है, मानधन योजना कहे या, तो किसानों को कई इंस्टॉलमेंट में शायद कुछ
1: इंस्टॉलमेंट में 2,000 की किस्तें आती है,
2: जिसमें शायद 60 वर्ष की आयु के बाद भी एक पेंशन के रूप में भी
1: मिलती रहती है, जिससे उसको आर्थिक लाभ ना होता रहता है।
2: तो तकनीकी के अलावा यदि हम आर्थिक लाभों की बात करें तो आप अभी खेत बचाओ अभियान के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से इस अभियान के बारे में क्या आप संदेश देना चाहेंगे किसान भाइयों को?
1: मैं किसान भाइयों को तो यही संदेश देना चाहूंगा कि जो ये अभियान भारत सरकार ने शुरू किया है, ये हमारे भविष्य के लिए सबसे आवश्यक चीज है। अगर हमने आज अपने खेत को नहीं बचाया, आज अगर हमने संतुलित उर्वरकों का उपयोग नहीं किया, अगर हमने मृदा का प्रशिक्षण नहीं कराया, अगर हमने ना इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन नहीं किया, मौसम आधारित खेती नहीं की, तो हम आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको ना तो हम अच्छी जमीन दे पाएंगे, ना हम अच्छा ना वातावरण दे पाएंगे। अगर हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे समाज को अगर हमें सुरक्षित रखना है, अच्छा खाने को मिले और उनमें किसी तरीके के रोग नहीं हो, तो आज हमारी ये आवश्यकता है कि इसको एक अभियान के रूप में लें हम, और एक सब मिलजुल कर सरकार प्रशासन समाज सब मिलकर एक ही ना संकल्प लें कि हमें हमारी जमीन को सुधारना है, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है, उसमें जहर नहीं डालना, वरना हमारी जमीन धीरे धीरे बंजर हो जाएगी, जो किसी काम की नहीं रहेगी, और उससे हमारे खाद्यान्न पे भी बहुत फर्क पड़ेगा, और जो हमारे उत्पाद आ रहे हैं तो वो उस उत्पाद में वो गुणवत्ता नहीं होगी, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों में कई तरीकों के रोग होंगे, हमारा वातावरण दूषित होगा। तो मेरे सभी किसान भाइयों से ये निवेदन है कि जो ये अभियान है, इस अभियान में पूर्ण रूप से भागीदारी निभाएं।
2: दीपक जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और खेत बचाओ अभियान और जो सरकार के 10-12 वर्ष तो जागरण काल के दौरान जो पूर्ण हुए, किसानों से संबंधित आपने चर्चा की, खेत बचाओ अभियान के बारे में आपने इनके उद्देश्य को जो है किसानों तक पहुंचाया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद भाई, धन्यवाद।

पीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश।

वाहन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।

रंगी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए।

0: की है पुड़िया, भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी।
1: तो श्रोताओं, खेती की लागत कम किस प्रकार होगी, उत्पादन कैसे बढ़ेगा और मिट्टी लंबे समय तक उपजाऊ किस प्रकार बनी रहेगी। सरकार किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध करा रही है, लेकिन इसका मतलब जरूरत से ज्यादा उपयोग नहीं है। सही मात्रा में खाद उपयोग ही टिकाऊ खेती की कुंजी है। खेतों को लाभकारी बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। सोयाबीन, धान, दलहन फसलों के लिए क्षेत्र में विशेष प्रदर्शन आगे किए जाएंगे। और आज हमने दीपक जी से बात की और आपको बताए कि 12 वर्षों में सरकार ने क्या क्या कार्य किया और विशेष रूप से खेत बचाओ अभियान के लिए आज हमने बात की। धन्यवाद।
2: आजादी का अमृत महोत्सव।
3: श्रोताओं नमस्ते, जैसलमेर कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सरकार की 12 वर्ष की उपलब्धियों तथा खेत बचाओ अभियान पर कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री दीपक चतुर्वेदी से तरुण शर्मा की बातचीत। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है, साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आगे भी लगातार काम करती रहेगी। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। सुरक्षित रक्त के महत्व के बारे में जागरूकता लाने और स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रत्येक साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं रखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। उन्होंने रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी बल दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने भी लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान का आह्वान किया है। इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सामाजिक संगठनों की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में बीएड में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट PTET 2026 आज आयोजित किया गया। सुबह 9 बजे से शुरू हुई ये परीक्षा दोपहर 12 बजे तक आयोजित हुई। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद एंट्री दी गई। परीक्षा में कुल 1,26,600 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। परीक्षा की निगरानी के लिए जयपुर में एक क्षेत्रीय केंद्र में विशेष कमांड सेंटर बनाया गया। वहीं संवेदनशील केंद्रों की निगरानी AI आधारित सॉफ्टवेयर की मदद से की गई। जालौर जिले के एलाना गांव के पास बिशनगढ़ साइला रोड पर आज एक सड़क हादसे में एक महिला की मृत्यु हो गई और 5 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को जालौर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दौसा के आगरा बाईपास कट पर आज तड़के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से जयपुर आ रही रोडवेज आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। उधर उत्तर प्रदेश के कासगंज में हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ये दुर्घटना एक निजी बस के रोडवेज बस से टकरा जाने से हुई। हादसे में करीब 40 लोग घायल हो गए। घायलों को भरतपुर और अन्य स्थानों पर उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बस में सवार ये सभी लोग भरतपुर के रहने वाले थे और सौरोंजी जा रहे थे। राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने जयपुर के मानसरोवर में एक फर्म पर कार्रवाई करते हुए 1,300 किलो खाद्य सामग्री सीज की है, जबकि 450 किलो एक्सपायरी आटा और दाल मौके पर ही नष्ट करवाया गया। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों में कई उल्लंघन पाए गए, जिसके चलते फर्म के खिलाफ नोटिस जारी कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800 7800 पर भेज सकते हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम मुमल।

मुमन सुनने वाली सभी बहन सखियों को मेरी सहेलियों को आपके रेडियो दोस्त सुधा पुरोहित का प्यार भरा नमस्कार। तो सखियों एक बार फिर हाजिर है हम आपके हमारे पसंदीदा कार्यक्रम मुमल के साथ में, हमारा अपना कार्यक्रम। प्यारी सखियों, हम महिलाओं का एक धर्म कह दो या ये कह दो कि एक जिम्मेदारी या एक फर्ज है, इसे लगभग हम सब पूरा करते हैं कि हम दान पुण्य बहुत ज़्यादा करते हैं। इसमें अभी तो अधिक मास चल रहा है तो महिलाएं कई तरह की वस्तुओं का दान करती है और ये माना जाता है कि इस तरह दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वैसे ही अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज है 14 जून और आज के दिन विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। तो हम इतने दान पुण्य करते हैं तो उसमें हमें रक्तदान को सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि 14 जून का जो ये आज का दिन है, इस दिन का उद्देश्य है लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूक करना और रक्तदाताओं का सम्मान करना, और आज ही रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है। प्यारी सखी, हम जितने भी दान पुण्य करते हैं उसमें रक्तदान मानवता की सबसे महान सेवाओं में से एक माना जाता है। रक्त ऐसा अमूल्य दान है जिसे किसी कारखाने में बनाया नहीं जा सकता, इसलिए जरूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान जीवन दान के समान होता है। हम देखते हैं कि आए दिन दुर्घटना, ऑपरेशन, गंभीर बीमारी, प्रसव या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में रक्त की जरूरत पड़ती है। रक्तदान करने से न केवल दूसरों का जीवन बचता है बल्कि रक्तदाता के स्वास्थ्य की नियमित जांच का अवसर भी मिलता है। स्वस्थ व्यक्ति समय समय पर सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है और एक व्यक्ति द्वारा दिया गया रक्त कई लोगों की मदद कर सकता है। आज के दिन लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया जाता है और जो रक्त देते रहते हैं उनका भी सम्मान किया जाता है। साथ ही साथ समाज में रक्तदान को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करना भी जरूरी है। हमें यह समझना चाहिए कि रक्तदान एक सामाजिक जिम्मेदारी है। यदि अधिक से अधिक लोग स्वेच्छा से रक्तदान करें तो किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को रक्त की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रक्तदान महादान है या मानवता, सहयोग और संवेदनशीलता का प्रतीक है। हमें स्वस्थ होने पर नियमित रूप से रक्तदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा। इसके साथ ही सखियों, रक्त एक जीवन रक्षक वस्तु है और जो मैंने कहा कि किसी कृत्रिम रूप से किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, अपितु केवल मानव शरीर से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। रक्तदान किसी जरूरतमंद का अन्य जीवन बचा सकता है तथा किसी भी अन्य कार्य से बढ़कर आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों के हित से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इसलिए आप लोग भी रक्तदान के लिए प्रेरित होइए, खुद को प्रेरित कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कीजिए। स्वेच्छा से रक्तदान करना बहुत जरूरी है ताकि रक्त की कमी से किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु ना हो। तो दान पुण्य तो हम काफी करते हैं, जो मैंने कहा कि हम महिलाओं का तो एक कर्तव्य समान बन गया है कि हम रक्तदान करें। इसे अपने फर्ज समझे, और ऐसा क्यों कि पुरुष ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि रक्तदान को सभी दानों में श्रेष्ठ दान और श्रेष्ठ कर्म माना गया है और प्रत्येक इंसान को इंसानियत की खातिर अपने जीवन में रक्तदान जरूर करना चाहिए। और इंसान द्वारा दान किया गया रक्त अगर हम रक्तदान करते हैं तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति की अगर प्राणों की रक्षा होती है तो इससे ज़्यादा सुकून की बात तो किसी रक्तदाता के लिए या अगर हम अपने लिए भी कहें तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वेच्छा से रक्तदान कर सकता है और रक्तदान करने से एक भ्रांति है कि कमजोरी आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ब्लड तो शरीर में बनता रहता है तो जो कमी होती है वो वापस पूरी भी हो जाती है। तो सखियों, हमें आज के दिन ये प्रण लेना चाहिए, खुद से एक वादा करना चाहिए कि जिस तरह से हम दूसरे दान करते हैं उस तरह से हम रक्तदान भी करेंगे, खुद भी स्वप्रेरित होंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे।
चर्चा आगे भी जारी रहेगी, आइए सुनते हैं।

लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि रक्तदान के साथ साथ हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने पर भी जोर देना चाहिए। जो कहते हैं ना कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारी, वो हमें बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके लिए हमें संतुलित आहार है, नियमित व्यायाम है, पर्याप्त नींद और तनाव मुक्त जीवन शैली को अपनाना होगा, क्योंकि यही सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कुछ बातों पर अगर गौर करें तो हमें काफ़ी फायदा होगा। जैसे विटामिन सी से भरपूर जो फल होते हैं, संतरा, नींबू, पपीता, स्ट्रॉबेरी जैसे फलों को हमें अपने आहार में शामिल करना होगा, ताकि जो वाइट ब्लड सेल्स है वो भरती है। साथ ही साथ पालक है, ब्रोकली है और अन्य जो हरी सब्जियां होती हैं, इनमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन होते हैं, तो हमें ये भी लेना चाहिए। बादाम विटामिन ई का बहुत अच्छा स्रोत है और प्रोबायोटिक्स से भरपूर दही पाचन और आँख के स्वास्थ्य को भी दुरुस्त रखता है, तो 70% इम्यून सिस्टम जो है हमारा मजबूत होता है। साथ ही साथ हमारे किचन में जो मसाले हैं, लहसुन, अदरक और हल्दी, इनमें भी प्राकृतिक संक्रमण रोधी गुण होते हैं, तो इनका भी सेवन करना चाहिए। हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, योग है, प्राणायाम है या 30 से 40 मिनट की जो सैर है, उससे भी हमारे इम्यून सेल्स जो है वो सक्रिय होते हैं। और हमारे शरीर की मरम्मत के लिए सक्रिय वयस्क जो लोग हैं, उनको रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेनी चाहिए और तनाव बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक तनाव कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ाता है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। हमें खुद को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, दिन भर में पर्याप्त मात्रा में गुनगुना या सामान्य पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए फ्रीज का, उसके आगे हम बात करेंगे मटके के पानी की। संक्रमण से बचाव के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों के अनुसार समय पर वैक्सीन लगवाने से भी हमारा जो शरीर है वो गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रहता है। और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखिए, बार बार हाथ धोइए, घर के आसपास साफ सफाई रखिए और शराब और धूम्रपान का सीमित सेवन कीजिए, और अगर हो सकता है तो करिए ही मत, क्योंकि हमारे शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को कमजोर करते हैं। एक बात अच्छी हम आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम, कि लोग खाने पर ध्यान न देकर विभिन्न प्रकार की सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो सप्लीमेंट का सेवन अगर करते भी हैं आप, तो पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श या सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर हम जानेंगे मटके के पानी के बारे में कि वो किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन लेते हैं ब्रेक और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश और प्यारा सा गाना।

क्या ही कक्षा अभी जो आपने गाना सुना वो ऐतराज फिल्म से था और आवाज भी उदित नारायण और अलका याग्निक ने। सच में अभी हमने बात की कि हमें रक्तदान करना चाहिए

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: हो गया इंतजाम।
3: किसका?
2: गुड्डी की फीस का।
3: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
4: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत,
3: वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
5: RBI कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

सखियां अभी आपने सुना दिल में ये कहा है दिल से, फिल्म थी धड़कन और आवाज थी कुमार सानू, अलका याग्निक की। आज का कार्यक्रम आपके और हमारे स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता लाने को समर्पित है। जैसे हमने बात की कि रक्तदान करने से क्या फायदा होता है, हमने ये भी बात की कि हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ानी चाहिए। प्यारी सखियों, अभी गर्मी का मौसम है, हम देखते हैं कि हम कहीं भी बाहर से आते हैं या बच्चे बाहर से आते हैं तो सीधा फ्रिज खोल के ठंडा पानी पीते हैं और गर्म पानी तो पीना बहुत दूर की बात है इस गर्मी में। तो हम मानते हैं कि यहाँ पर हम फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे मटके के पानी को पीने के क्या फायदे हैं, क्योंकि मटके का जो पानी होता है उसको अमृत तुल्य माना गया है। मटके का पानी सबसे पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। ये प्राकृतिक तरीके से पानी को ठंडा करता है और इसमें मौजूद जो क्षारीय गुण है वो पेट के एसिड को संतुलित करते हैं। ये पाचन शक्ति को सुधारने और लू और गर्मी से बचाव के लिए फ्रिज के पानी का सबसे बेहतरीन और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है। मटके के पानी को पीने से काफ़ी फायदे होते हैं, जैसे नेचुरल कूलिंग मिलती है। मटके की मिट्टी के सूक्ष्म छिद्र वाष्पीकरण के जरिए पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा करते हैं। ये फ्रिज के पानी की तरह गले में खराश या खांसी की समस्या नहीं पैदा करता। एसिडिटी और गैस से भी राहत मिलती है। मटका क्षारीय प्रकृति का होता है और जब पानी इसमें स्टोर होता है तो यह शरीर के एसिडिक स्तर को संतुलित करता है, जिससे गैस और पेट की जलन कम होती है। साथ ही साथ हमारे पाचन तंत्र में भी सुधार आता है। पानी का सही तापमान और मिट्टी के जो प्राकृतिक खनिज है वो मिलकर मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देते हैं, जिससे भोजन आसानी से पच जाता है। और हमें कई नेचुरल मिनरल्स भी मिलते हैं। मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं जो पानी में घुलकर उसे खनिज युक्त बनाते हैं। यह हड्डियों और मांसपेशियों के लिए भी अच्छा माना गया है। और अत्यधिक ठंडा पानी गले की जो नसें हैं हमारी उसको सिकोड़ देता है, लेकिन मटके का पानी हल्का ठंडा होता है जो गले को नुकसान नहीं पहुंचाता। भीषण गर्मी में शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने के लिए भी मटके का पानी बहुत जरूरी है। ये डिहाइड्रेशन और लू के प्रभाव को कम करता है। लेकिन मटके के पानी को के फायदे तो हम जान ही चुके हैं, लेकिन हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे मटके को हर हफ्ते नींबू या बेकिंग सोडा से साफ करना चाहिए, और अगर हम पुराने मटके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें पहले उसे अच्छी तरह धोना चाहिए। हर दिन मटके का

पानी बदलना चाहिए ताकि इसमें बैक्टीरिया या काली ना पनपे। मटके को हमेशा अच्छी तरह से ढककर रखिए और पानी निकालने के लिए साफ और लंबे हैंडल वाले बर्तन का उपयोग कीजिए। तो मटके के पानी के कई औषधीय गुण हैं और अगर हम पूरी स्वच्छता रखते हैं तो हमें मटके का पानी काफ़ी फायदा देता है। और जो अभी हमने कहा कि मटके का पानी तो अमृत तुल्य माना जाता है और इससे काफ़ी फायदे होते हैं। जो फ्रीज के पानी से जो नुकसान होते हैं वो नुकसानों से हम बच सकते हैं। हालांकि मटके के पानी को पीने से कोई बीमारी जड़ से ठीक नहीं होती है, लेकिन पाचन समस्याएं हैं, कब्ज है, गले की खराश है, ऐसी कई सामान्य परेशानियां हैं, उसमें हमें राहत मिलती है और काफ़ी मिनरल्स भी हमें प्राप्त होते हैं। तो मटके के पानी को मटका जो है वो मिट्टी पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा और शुद्ध करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी गंभीर बीमारी का इलाज है आप मटके के पानी में ढूंढें, लेकिन इससे फ़ायदा बहुत होता है। और एक बात और है कि शरीर को डिटॉक्स करना, पाचन सुधारना, वजन घटाना, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाना और मांसपेशियों को आराम देकर और उनके दर्द को कम करना, इन सब में भी मटके का पानी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और त्वचा में नमी बनाए रखता है, जिससे चेहरे पर निखार आता है और समय से पहले जो झुरझुरापन की समस्या है वो भी कम होती है। आजकल हम देखते हैं कि 30-35 साल की उम्र होती नहीं है कि हर कोई जोड़ों के दर्द से परेशान है, तो ये जो मटके का पानी है वो जोड़ों को चिकनाई देता है, क्योंकि वो फ्रीज के पानी जितना ठंडा नहीं होता है और मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है उसको कम करके जोड़ों के दर्द से भी राहत दिलाता है। तो हमें ऋषि सभी यही सलाह देती हैं कि हमेशा मटके का पानी ही पीना चाहिए।

प्यारी बच्चियों, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए समय समय पर आपको कई योजनाओं से, काफ़ी योजनाओं से अवगत करवाते हैं ताकि उसका फ़ायदा, लाभ जो है वो आप ले सकें। तो ऐसे ही एक योजना है ड्रोन दीदी, जी हाँ, नमो ड्रोन दीदी योजना, और ये भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना है। इसके तहत जो महिलाएं हैं और यहाँ के जो स्वयं सहायता समूह है उनको ड्रोन खरीदने के लिए भारी सब्सिडी और उन्हें उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के तहत महिला एवं महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको ड्रोन की कुल लागत का लगभग 80% तक अधिकतम 8 लाख रुपये केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। महिलाओं को 15 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें उन्हें ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण और रख रखाव सिखाया जाता है। इसके बाद उन्हें ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट भी मिलता है। प्रशिक्षित महिलाएं किसानों को किराए पर ड्रोन की सेवाएं देकर अपनी आजीविका कमा सकती है और अतिरिक्त आय अर्जित कर सकती है। यह योजना ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है, खेती की आधुनिक तकनीक से किसानों को लाभान्वित करती है। तो आप भी अपने आसपास इस तरह की जो महिलाएं हैं तो इनका फ़ायदा ले सकती है, या अगर आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं तो अपने आसपास की बच्चों को इस योजना से अवगत ज़रूर करवाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, हमारी बहनें, इस योजना का फ़ायदा ले सकें।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
1: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

हमको भी है प्यार तुमको भी है, चलते चलते फिल्म का ये गाना भी आपने सुना, जिसे आवाज़ दी थी अभिजीत और अलका याग्निक ने। और चलते चलते अब हम बात करते हैं किचन की। जी हाँ, अगर हम अपनी सखियों को किचन की महारानी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारा अधिकतर समय किचन में निकलता है। तो प्यारी सखियों, किचन के काम को आसान और स्वादिष्ट खाना और व्यवस्थित तो बनाने के लिए हम कुछ बेहतरीन टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं। कटी हुई हरी सब्जियों को ज़्यादा दिन तक फ्रेश रखने के लिए उन्हें किसी एयरटाइट बैग या कंटेनर में रखने से पहले एक सूखा और हल्का गीला पेपर टॉवल जो होता है या टिश्यू पेपर जो है उसको अंदर ज़रूर रखना चाहिए, उससे सब्जियाँ ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रहती हैं। अगर आप हरी मिर्च को स्टोर करना चाहते हैं तो फ्रिज में रखने से पहले उनकी डंठल जो है डंडियाँ को तोड़ कर अलग कर दें। ऐसा करने से मिर्च जो है वो लंबे समय तक खड़ती नहीं ख़राब नहीं होती है। अगर सब्जी की ग्रेवी को होटल या ढाबे जैसी गाढ़ी बनाना है और टेस्टी बनाना है तो टमाटर के साथ थोड़े से हरे धनिया के डंठल भी पीस लीजिए, नहीं तो आप सूखी बेद को भी पीस कर उसमें डाल सकती है। हम ये चाहते हैं कि हम जो भी हरी सब्जियां बनाएं, या पालक या मटर या अन्य जो भी हरी सब्जियां होती हैं, उनको उबालते समय अगर हम उसमें थोड़ा सा नमक और आधा चम्मच चीनी डाल दें तो सब्जियों का जो प्राकृतिक हरा रंग है वो बरकरार रहता है। नींबू से ज़्यादा रस निकालना हो और अगर लग रहा है कि नींबू सूखा या कड़ा है, इसे कुछ देर के लिए हल्के गर्म पानी में छोड़ दीजिए या हाथों से रब, आप जमीन पर रख के हाथों से रब कीजिए, इससे नींबू में ज़्यादा रस निकलेगा। हम देखते हैं कि आलू जो है वो अंकुरित हो जाते हैं कई बार, कि आलू प्याज टमाटर तो हम अधिक मात्रा में लेकर या इसमें आलू तो हम आमतौर पर अधिक मात्रा में ला कर ही रखते हैं, घर पर स्टोर करते हैं, तो आलू की टोकरी या बोरी में सेव रख लेने से आलूओं में जल्दी अंकुरण नहीं निकलता। अगर आप लहसुन का उपयोग करते हैं तो लहसुन की कलियों को छीलना तो बहुत मुश्किल काम होता होगा, तो उन्हें अगर आसानी से छीलना है तो उन्हें कुछ मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दीजिए तो उसका छिलका जो है वो आसानी से निकल जाएगा। तो यदि आप अपने रोज़मर्रा के खाना पकाने और सुबह के बेहतर तरीके जानना चाहते हैं तो ऐसी कई बुक्स आती है और ऑनलाइन भी हम देखते हैं कि कई टिप्स हमें मिल जाते हैं और हम भी समय समय पर आपको कुछ टिप्स देते रहते हैं। तो रोज़मर्रा के खाना पकाने को आसान बनाने के लिए आप इस तरह की छोटी छोटी टिप्स को ध्यान में रखिए तो आप खाना बनाने की जो अड़चने आती है उनसे बच सकते हैं। और हम भी चलते चलते सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

तो प्यारी सखी, इसी के साथ घड़ी ने इशारा कर दिया है कि आपके विदा होने का समय आ चुका है। आई होप आप आज की जो हमारी बातें हैं उन्हें ध्यान में रखेंगे, रक्तदान के लिए प्रेरित होंगे और लोगों को भी करेंगे, साथ ही साथ अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएंगे। ड्रोन दीदी योजना के बारे में आप लोगों को अवगत कराएंगे और चिकन टिप्स को भी ध्यान में रखेंगे। तो दीजिए अब मुझे इजाजत, तब तक हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार और प्यार भरा नमस्कार।

0: राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को UPA सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक

0: कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायोग संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति

0: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमरीका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मानसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
1: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरीसा पीठा, चकुड़ी पीठा और मसूर राजा पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को, जिन्हें आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

अब नहीं हो तो मैं बेकरार हूँ, तुम पास जब नहीं तो मुझे

0: मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो।
1: जब मेरी गुलरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी।
0: अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़क।

0: फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी।
1: अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा छोड़ो। मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान लड़कपन।

0: मशहूर हो।
1: अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूमघट तो जरा छोड़ो। आह मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़।

0: झूर हो
1: घबरेर चंदरिया मलमल की फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी।
0: अरे यार मेरी तुम भी हो गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जमा मेरी जान लड़कपन छोड़ो। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवा मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
2: तर्ज सचिन देव बर्मन की मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना। किशोर कुमार आशा भोसले का गाया। फिल्म थी तीन देवियां।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जो शहीद

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: शागिर्द फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, नुसरत सुल्तानपुरी की बोल थी।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की जुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जीवन से भरी तेरी आँखें।
1: आप सुन रहे थे सफर फिल्म का गीत, किशोर कुमार का गाया, इंदिवर के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी की तर्ज थी।
0: लूट लिया दिल तूने मेरा राह में चलते चलते मैं न मार गई रे।

0: सपनों में भर के प्यार का कजरा अखियां मलते नैना मार गई।
1: राम और श्याम इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफी आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने, और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

सुबह नमस्कार। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं और वक्त हो चला है कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम को बिल्कुल ध्यान से सुनिए श्रोताओं, कहीं आपकी पसंद के गीत इसमें शामिल तो नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सुनने वालों को। संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

ब्लैक मेल, इस फिल्म में आपने सुना किशोर कुमार की आवाज राजेंद्र कृष्ण के बोलते कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी और इस गीत को पसंद किया शाहू नगर यवतमल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, यहीं से रोशनी और बेबी प्रियांशी ने।

कमाल अमरोही की रचना थी गुलाम मोहम्मद की तर्ज, लता मंगेशकर की आवाज में पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत को पसंद किया अनिल इंदौर से, अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल केतन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।

0: है मिलन की साथी मेरे हारे
1: मुझे कहीं ले चल बाहों के सहारे
0: बागों में
1: खेतों में
0: नदियों के किनारे है मिलन।

फिल्म मेला का ये गीत था मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया, आर डी बर्मन की तर्ज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। जिला अहिल्या नगर महाराष्ट्र से नंद कुमार अद्वंत, उर्मिला अद्वंत, नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अद्वंत की ये फरमाइश थी और इसी गीत को पसंद किया। बेरखेड़ा उज्जैन से विनोद मुरत, नेहा जैन, दीपक पैंक मुरत और चेतन नहाटा ने।

0: विविध भारती का ये कार्यक्रम है मन चाहे गीत।
1: बात करते हैं।

कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और हेमलता की आवाजें थी, अनजान का लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गांधीनगर चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और पंचोलिया परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश।

फिर वही फुर्सत है रात दिन फिर है फिर वही

0: आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया, गुलजार के बोल थे मदन मोहन का संगीत था। इस गीत को पसंद किया जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नजमा रियाज शमरीन परवीन और मोहम्मद रेहान, और इसी गीत को सुनना चाहते थे जबलपुर से जीनेन्द्र जैन। और इस गीत के पहले श्रोताओं आपने कच्चे धागे फिल्म का गीत सुना था, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर की आवाज थी। इस गीत के साथ ही आवाज का मन चाहे गीत कार्यक्रम संपन्न करने की संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: किन्हें ढूंढता है फिर वही, उनके बिना।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनिए नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार दूसरा और अंतिम भाग।

0: पांडव पांच गांव ही तो मांग रहे हैं महाराज, दुर्योधन से कहिए दे दे।
1: कह चुका
0: हूँ।
1: नहीं मानता।
0: क्या कहता है?
1: उसका तर्क है पांडवों ने अपनी धन संपदा राज सब कुछ द्यूत में हार दिया है, दासत्व से मुक्त होने के लिए पांडवों के लिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त रखी गई थी। ये अवधि पूरी होने पर पांडव दासत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए हैं, उन्हें उनका राज्य वापस लौटाया जाएगा ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्हें 5 गांव देने की बात कहां से उत्पन्न हो गई?
0: उसका तर्क अनुचित है क्या?
1: तर्क तो केवल तर्क ही है गांधारी, किंतु सत्य यह है कि कौरव और पांडव दोनों हैं तो एक ही वंश के, उनके बीच ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य शोभा नहीं देते। यदि युद्ध हुआ तो जय पराजय किसी की भी हो, विनाश तो वंश का ही होगा।
0: तो फिर आप पांडवों को समझाइए कि वे भूमि के लिए हठ न करें।
1: कोई लाभ नहीं होगा।
0: क्यों?
1: उनकी ओर से समस्त निर्णय श्री कृष्ण लेते
0: हैं। वो क्या कहते हैं?
1: वो ही तो सारे विवाद के मूल में है। कहते हैं दूत में रखे गए पड़ों की कोई मान्यता नहीं, वो सब शकुनी का छल था।
0: छल? युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया था, शकुनी की निपुणता और अपने दुर्भाग्य के कारण युधिष्ठिर पराजित हुआ, इसमें छल कहाँ है?
1: इस विवाद से कोई लाभ नहीं गांधारी, सर्वनाश से बचने का केवल एक उपाय है।
0: क्या?
1: दुर्योधन को समझा दो कि पांडवों को 5 गांव देकर उनसे मैत्री कर ले।
0: उस पर मेरा वश नहीं है, वो मेरी सुनता कहाँ है?
1: और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्यों छुप क्यों हो गई? कुंती की क्यों सुनी जाती है? क्यों उसका प्रत्येक पुत्र उसके आदेश को वेदवाच मानता है?
0: फिर वही तुलना।
1: तुलना के अभिशाप से तुम बच नहीं सकती गांधारी, कुंती ने अपनी कटुता से मुक्ति पा ली, किंतु तुम।
0: कुंती के साथ मेरी तरह कोई छल नहीं।
1: क्यों नहीं हुआ था? कुंती जानती थी कि उसका होने वाला पति रोगी है, क्या उसके स्वप्न तुम्हारी तरह चूर चूर नहीं हुए? किंतु वे टूटी नहीं, उसने अपने दुख को जड़ता और संज्ञाहीनता का पर्याय नहीं बनने दिया। निराशा के मध्य भी उसने जीवन की एक सार्थक व्याख्या ढूंढी, जीवन को तुम्हारी तरह नकार नहीं दिया।
0: महाराज
1: गंधारी, कुंती के बच्चे स्नेह और मातृत्व के प्रतीक है, तुम्हारे बच्चे घृणा और तिरस्कार की उपज है। यदि ये बच्चे द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचेंगे तो और कौन खींचेगा?
0: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज, किसी प्रकार दुर्योधन को समझाइए, पांडव 5 गांव मांग रहे हैं, दे दे उन्हें।
1: दुर्योधन सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा गांधारी।
0: इसका अभिप्राय ये हुआ कि युद्ध अवश्यंभावी है और युद्ध का अर्थ है विनाश, संपूर्ण विनाश।
1: यही विधि का विधान है तो इसे कौन रोक सकता है?
0: ईश्वर कल्याण करे।

0: 아주 뜨겁듯한 해간 달이 파야넥 위나시카리 요트 산절깨다해 히스요트메락트기 나디아베자이기 타티 원타호자이기
1: विनाश को आमंत्रित करने का निर्णय हमारा तो नहीं,
0: किंतु हम इसके प्रभाव से अछूते भी नहीं रह सकते। जानता हूँ यह निर्णय आत्मघाती है, परंतु विवश हूं गांधारी, कुछ कर नहीं सकता। लगता है संजय आ रहा है, युद्ध का समाचार होगा।
2: महाराज की जय हो।
0: क्या समाचार लाए हो संजय?
1: कोई आहत हुआ?
2: नहीं महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? कौरवों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी हैं। उनकी सैन्य शक्ति भी पांडवों से अधिक है। आज तो युद्ध का पहला दिन था, दोनों दल बराबर रहे। सत्य तो यह है महारानी कि पांडव सेना आज पीछे हटी।
1: मेरे सब पुत्र तो सुरक्षित है ना संजय?
2: हाँ महारानी। राजन,
0: कहो संजय।
2: आज आपके 9 पुत्र मारे गए।
0: 9 पुत्र?
2: हाँ महाराज। जलसंध, सुषेण, उग्र, वीरबाहु।

0: रानी गांधारी, आपका पुत्र विकर्ण मारा गया।
1: चित्रसेन, उपचित्र, सुचारू, चित्राक्ष, नंद और उपनंद मारे गए।

महाराज, दुर्मुख, दुर्जय, दुष्कर्ण, शत्रुंजय, बिंद। महारानी गांधारी, आपके पुत्रों की संख्या घटते घटते केवल दो रह गई।

भीम के हाथों दुशासन भी मारा गया।

0: संजय, मेरा दुर्योधन कहाँ है? जिससे पूछती हूँ वही चुप। कहाँ चला गया है मेरा बेटा?
1: जिस भीम ने आपके दूसरे पुत्रों का वध किया, उसने ही महाराज दुर्योधन का भी।
0: दुर्योधन नहीं मारा जा सकता, मैंने उसे वज्र की देह दी है। संसार में ऐसे पुरुष का जन्म नहीं हुआ है जो दुर्योधन को मार सके। तुम असत्य बोल रहे हो संजय, कहो कि तुम असत्य बोल रहे हो।
1: नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूं। भीम नहीं महाराज दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार करके उनके प्राण ली।
0: क्यों? जंघा पर प्रहार, नाभि के नीचे मार। संजय, यह अन्याय है, अधर्म है, पाप है।
2: निसंदेह ये विश्वासघात है, ये मर्यादा का उल्लंघन है।
0: संजय, सच सच बताना, सच बताने की तुमने प्रतिज्ञा की है? क्या मेरे पुत्र का वध षड्यंत्र के कारण नहीं हुआ?

0: क्या ये सब?
1: देवी, महाराज दुर्योधन युद्ध से थककर एक सरोवर में विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर और उनके भाई उन्हें खोजते हुए सरोवर तक पहुंचे। युधिष्ठिर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, कहा तुम पांचों पांडवों में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो, यदि तुम विजयी हो गए तो तुम सारे राज्य के स्वामी हो जाओगे।
0: हाँ दुर्योधन, तूने भी को क्यों चुना?
1: देवी, महाराज दुर्योधन ने अपने गदा कौशल से भीम को लगभग परास्त ही कर दिया था, परंतु कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि भीम महाराज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे तो विजयी हो जाएगा।
2: ये घोर नीति।
1: भीम ने कृष्ण का यह संकेत तुरंत भांप लिया और सिंह की भांति झपट कर जंघा पर प्रहार किया। महाराज दुर्योधन कटे वृक्ष के भांति भूमि पर गिर।
0: बस बस संजय, अब आगे कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं। आज 100 पुत्रों की माता निसंतान हो गई, सब वेदनाएं सो गई, दुख की पराकाष्ठा ने मन को आवेगों से मुक्त कर दिया है।
2: फिर भी हमें जीवन का अभिशाप भोगना है गांधारी, एक अर्थहीन जीवन का अभिशाप। 100 पुत्रों की मृत्यु का आघात सहकर भी हमें अपने अस्तित्व का शव अपने कंधों पर ढोना है। अपने ही पुत्रों के वधिकों को हमें दीर्घजीवी और यशस्वी होने का आशीर्वाद देना है। पोछो गांधारी, आंसुओं से भीगी पट्टी तुम्हें अधिक कष्ट देगी। उठो उठो।
3: मैं वासुदेव कृष्ण माता गांधारी को प्रणाम करता हूँ।
0: वासुदेव कृष्ण, क्यों आए हो यहाँ? अब मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा, किसे मारोगे?
3: शांत हो राजमाता।
0: राजमाता, श्री कृष्ण उपहास क्यों करते हो? तुमने कितनी माताओं से उनका मातृत्व छीन लिया, कितनी स्त्रियों से उनका पति छीन लिया। मैंने अपने इन कानों से सहसों स्त्रियों का आतनाद सुना। अच्छा हुआ मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़े शवों को नहीं देख सकी। पट्टी बांधने का उपयोग पहली बार समझ में आया।
3: देवी गांधारी, क्या मैंने युद्ध रोकने का प्रयत्न नहीं किया था? क्या मैं दूत बनकर आपकी राजसभा में नहीं आया था? किंतु आपके पुत्र ने सुनी ही कहा, राज्य लोभ द्वेष से पीड़ित उसकी आत्मा।
0: नहीं कृष्णा, नहीं, तुमने युद्ध रोकने का वास्तविक प्रयत्न किया ही नहीं। तुम चाहते तो ये युद्ध हो ही नहीं सकता था। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी नीति और तुम्हारी हल्की सी धमकी इस युद्ध की महाज्वाला को रोक सकती थी।
3: देवी गांधारी,
0: कृष्ण मैं तुम्हारा दर्शन समझती हूँ। तुमने देख लिया था कि वस्तु स्थिति सुधार से परे है, फटे आकाश को सीकर ठीक नहीं किया जा सकता। नए जीवन की भूमिका रचने के लिए विगत को क्रूर विदाई देनी ही पड़ती है। किंतु कृष्ण, जो बचे हैं उनके विषय में कभी सोचा तुमने? हम अब क्या करेंगे, किसका मुंह देख कर जिएंगे, बताओ।
3: मुझे क्षमा करो माता।
0: दुर्योधन बुरा होगा, दुशासन ने नारकीय कृत्य किए होंगे, मेरे 100 के 100 बेटे तो इतने बुरे नहीं थे। तुम चाहते तो उनमें से एक जीवित रह सकता था, एक। हम अंधों की लाठी तो नहीं छिनती।
3: माता, जो अवश्यंभावी है उसे कोई नहीं रोक सकता, न मैं और न आप।
0: नहीं, तुम रोक सकते थे कृष्ण, तुम रोक सकते थे, किंतु तुमने प्रयत्न नहीं किया। छल और प्रवंचना तुम्हारी सबसे बड़ी नीति रही। वासुदेव, शापित जीवन की ज्वाला में झुलसी ये गांधारी तुम्हें शाप देती है। तुम्हारा समस्त वंश भी इसी प्रकार आपसी कलह में नष्ट हो जाए। जिस प्रकार चलकर तुमने मेरे पुत्रों को मारा है, उसी प्रकार किसी के भ्रम के कारण ही तुम्हारे भी प्राण निकले। जाओ, जाओ। मुझे किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं। मेरी जड़ी भूत आत्मा उस संवेदना से परे है

0: मन करता है अब हस्तिनापुर से दूर कहीं अरण्य में चले।
1: क्या किसी ने कुछ कह दिया? कुंती ने, द्रौपदी ने?
0: नहीं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि अपने पराश्रित होने की अनुभूति और गहरी हो जाती है। इससे मुझे अपने बच्चे अधिक याद आते हैं।
1: मैं समझ गया। ठीक है गांधारी, वंश परंपरा के अनुसार हमें वल्कल धारण कर वन में जाना चाहिए।

0: निश्वास लेने से क्या लाभ गांधारी। हम लोगों की गृहस्थी जैसे चलनी थी चली, और उसका स्मरण करके दुखी होने से क्या लाभ।
1: महाराज, मैं अपने दुखों के लिए उसास नहीं भर रही हूँ।
0: तो
1: यहाँ की खुली सुगंधित वाशु, पांव तले की असम धरती, उस पर वृक्षों की सूखी पत्तियों का स्पर्श, पास के वन से आ रही जंगली फूलों की गंध, कहीं पास ही कोई पहाड़ी झरना है उसकी कल कल ध्वनि, न जाने क्यों सहसा गांधार की याद मन में उभर आई।
0: सत्य ही तो एक ज्योतिहीन के गले बदने की यातना तुमने पूरे जीवन भर सही। कविता ही खो गई तुम्हारे मन की, मायके की याद आना कितना स्वाभाविक है।
1: मायके की याद, उसे तो मैं उसी दिन भूल गई थी जिस दिन गांधार की सीमा का त्याग किया था। मुझे तो स्मरण हो रहा है गांधार प्रदेश, उस भूमि का स्पर्श कितना सौम्य है।
0: गांधारी, हमने और तुम्हारे पितृकुल ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी प्रवंचना की। विवाह से पहले मेरे अंधत्व की जानकारी तक नहीं थी तुम्हें। हमारे कुल ने तुम्हारे प्रति अक्षम्य अपराध किया।
1: महाराज, अब पुरानी बातों को दोहराने से क्या लाभ।
0: अब हमारे जीवन में मृत्यु के अतिरिक्त कोई नई बात तो होने से रही। पुरानी बातों की गश्ती को उलट पुलट कर ही समय के दबाव को कम किया जा सकता है। एक बात कहूंगा अंधारी, तुमने भी कम प्रतिशोध नहीं लिया। क्या आज भी पुरानी बातों को क्षमा नहीं करोगी?
1: महाराज,
0: सचमुच बहुत बड़ा दंड दिया तुमने। विवाह की पहली रात मुझे आज भी याद है। ओह,

0: कितनी भयानक रात थी। मैंने तुमसे पट्टी हटाने के लिए कहा था और उत्तर में तुमने स्त्री धर्म पाति प्रत्यय न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी ना।
1: हाँ, कही थी।
0: और उस समय मेरे मन में क्रोध उमड़ पड़ा था। इच्छा तो हुई थी कि उसी समय
1: आपने मेरी आंखों की पट्टी निकाल कर फेंक क्यों नहीं दी। आप केवल एक बार कह देते कि ये पति की आज्ञा है तो क्या मैं टाल सकती थी।
0: मैंने सोचा तुम धीरे धीरे मान जाओगी। जब दुर्योधन तुम्हारे सामने लाया गया मुझे आशा थी कि तुम स्वयं पट्टी उतार फेंकोगी, किंतु तुमने अपना हक नहीं छोड़ा।
1: आपने कभी कहा नहीं, आप राजा थे उस अधिकार से ही।
0: तब तक बात सीमाएं पार कर चुकी थी, तुम महासती के रूप में विख्यात हो चुकी थी। तुम अपने ही बंधनों का दंड भोग रही
1: महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं?
0: जो सत्य है वही कह रहा हूं। अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। सुनो, एक प्रश्न का उत्तर बहुत प्रामाणिकता से देना। तुमने कभी मुझसे प्रेम किया? शरीर से परे एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कभी तुमने मुझसे प्रेम किया? यदि शरीर धर्म का परिणाम ये बच्चे न होते तो क्या हम निकट आते?
1: महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी।
0: तुम्हारे उत्तर न देने में ही मुझे उत्तर मिल गया है कांधारी। जानती हो हम लोग कब सच्चे अर्थों में निकट आए? युद्ध में अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद उस व्यथा ने हमें एक दूसरे के निकट पहुंचाया, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य बना दिया, और इसीलिए आज उस अनिवार्यता के बोध से
1: स्त्री मन की इतनी गहरी समझ रखते हुए भी
0: कुरुवंश के पुरुषों ने स्त्रियों पर असंख्य अत्याचार किए हैं कांधारी, और उसका प्रायश्चित भी उन्होंने भोगा है। अंबा के शाप में भीष्म चलते रहे, तुम्हारे शाप में मैं जला, मेरी संतति चली। कुंती का विवाह भी एक पंगु से हुआ था, किंतु वो दूसरों से भिन्न थी। उसने अपना दुख निगल कर अपना प्रेम बच्चों पर उड़ेल दिया। इसीलिए कांधारी, कुंती के पांच ही बेटे विश्व विजयी हुए। वो प्यार की संतान है, मां का अमृत उन पर अहर्निश बरसता रहा, और हमारे बच्चे केवल शरीर की उपज थे, केवल संख्या के पर्याय। इसीलिए वो सौ होकर भी नष्ट हो गए।
1: हमारे बच्चे संख्या के शिशु थे, उन्हें किसने प्यार दिया, किसने संस्कार दिए, किसने दिशा दी? हाँ, अपराधी भी नहीं हम है महाराज, हम।
0: कांधारी देखो, मैं आज मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा मन व्यथित हो, किंतु जिस हज धर्मी को लेकर तुम अपने आप से लड़ती रही हो वो युद्ध संबंध हो। अपने से उठकर तुम सत्य का साक्षात्कार कर सको, मुझे नहीं तो कम से कम अपने आप को क्षमा कर सको, और कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंच सको कि एक अन्याय का प्रतिकार दूसरे अन्याय से नहीं होता।
1: महाराज, मेरे जीवन का प्रारंभ

0: किसी राग के कोमल गांधार की तरह हुआ था, किंतु उसके वादी संवादी स्वरों का तालमेल कभी नहीं बैठा। पूरा राग बिखर गया और उनका स्थान ले लिया दिशाओं को बहरा करने वाले कोलाहल ने। किंतु महाराज, अब हम मन शांत है। आज मैं अपने सतीत्व को साक्षी रखकर कह सकती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ।
1: गांधारी, लगता है पास का वन जल रहा है, उसमें आग लग गई।
0: आपको कैसे ज्ञात हुआ?
1: धुएं की गंध वायु के पंखों पर यहाँ तक आ रही है, मैं उसी ओर जा रहा हूँ।
0: महाराज,
1: हाँ गांधारी, अभी तुमने अपने प्रेम की आत्म स्वीकृति थी, मन के सारे अभाव दूर हो गए। अब मन कैसा तृप्त है, इसी तृप्ति के साथ इस जीवन का भी अंत हो जाना चाहिए, एक तृप्तिमय अंत।
0: रुकी, रुकी, मैं भी साथ चलूंगी।
1: तुम भी?
0: गांधार के स्वर भले विकृत हो गए, पर अब मन में नए राग के स्वर उभर रहे हैं। चलिए, इसी के स्वर में ताल लय में अपने जीवन को विसर्जित कर दें।
1: चलो, तावानल पड़ रहा है। आज प्रकृति ने ही हमारे लिए इतनी उदारता से चिता रच दी है। जीने योग्य आदर्श स्थिति इस जीवन में कभी नहीं मिली। आज मृत्यु के योग्य आदर्श स्थिति मिली है, तो उसका परित्याग क्यों किया जाए? चलो गांधारी, थामो मेरा हाथ, इसी तरह
0: चलिए महाराज, इस ज्वाला में संकेत है परिवर्तन का, एक नए अध्याय की प्रारंभ का समय। हमारा बोझ उतार कर

अभी आपने सुना डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने लंगारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता भी।

0: तो कभी छान।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं, इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, हम उनके गीतों की बात कर रहे हैं, देशभक्ति गीतों की, साथ ही उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे हैं प्रदीप जी ने, और जिन्हें हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा भजन ज्यादा अच्छा है या कौन सा कम है, तो आप बताइए कि भजन लिखने की जो उनकी आदत थी वो कैसे पड़ी और किस तरह से भजन की दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भजन लिखे।
3: उनकी माँ के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे, वो भी उन्होंने बहुत आत्मसात किए बचपन से। तो भजन की आदत तो उनको भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि भगवान उनके लिए कौन थे? अदृश्य शक्ति। ये नहीं है कि वो मंदिर जाएंगे या वहां जाके कुछ पूजा करेंगे, वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते थे, रिचुअल्स में नहीं। लेकिन उनके लिए आकाश में बैठा वो भगवान था जो उनकी बात सुनते हैं। अगर कभी आप सुनेंगे उनके गीत तो वो भगवान को भी ऐसे संबोधित करते हैं कि जो वो अपनापन से करते हैं। अगर आप ऊपर देख के ये कहे कि सूरज रे जलते रहना, रे हाँ, तो ये रे जो है ना वो एक प्रेम का संबोधन है। तो उन्होंने भगवान को भी ऐसे ही संबोधन किया और गाने भी और भजन भी बहुत पॉपुलर लिखे। उनकी शुरुआत का एक भजन था, मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की रे, राधे श्याम की रे मुक्ति धाम की रे, ये उनका शुरुआत की पहला भजन था फिल्म के लिए। और उसके बाद में अगर आप आगे चले तो मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की,
2: वो तो बहुत पॉपुलर था।
3: तो भजन लिखने में और मदद करो संतोषी माता, तो उनको भगवान के प्रति जो था ना वो भी आस्था मन से आती थी, ना कोई मंदिर में जाके। तो कई भजन ऐसे हैं और बैठ के लोग सुनते हैं तो वो भजन भगवान के भजन है। हरि दर्शन फिल्म आई थी उसमें बहुत सारे भजन थे, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान, वो भी एक बहुत पॉपुलर गीत था।
2: बिल्कुल,
3: बहुत सारे हरि दर्शन फिल्म के गाने हैं जो भजन है।
2: तो घर का माहौल कभी ऐसा हुआ कि आप बहनों ने मिलकर भी उन भजनों को गाया अपनी माँ के साथ?
3: बहुत बार, माँ के साथ तो नहीं, माँ तो नहीं गाती थी।
2: अच्छा,
3: माँ तो कहे कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं गाऊंगी हम गाते थे।
2: अच्छा।
3: तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, वो हमको बहुत अच्छा लगता था।
2: तो मितुल जी आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें?
3: जरूर सुनवाइए।

0: मेरे जग में है भगवान दगा ही दगा दगा ही दगा मन में सोचा तो ये जाना बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा कोई न सगा
1: बिन तेरे यहाँ पर कोई

0: निखिल जी, कभी पिता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला?
1: घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी।
0: अच्छा।
1: आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली।
0: अच्छा जी।
1: और माँ वहां पर खड़े होके सुनते हैं, तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी। फिर मजाक में हर एक बात में, तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ ठीक है, मतलब
0: हाँ।
1: वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है, आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है, तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसे ही बातचीत बैठ बैठ के हंसी मजाक चलती थी।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी, जैसे घर में परिवार में होती है।
0: कभी प्रदीप जी ने आप बच्चों से पूछा हो भी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो, कुछ लिखते हो पढ़ते हो? मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोगों में, क्या कभी ऐसा भी कहा उन्होंने?
1: नहीं नहीं नहीं उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं।
0: अच्छा।
1: जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है, मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया, और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना।
0: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
1: हाँ, तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा। बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वो उनको जैसे तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागृत हुआ
0: जी,
1: कि भाई ये काम आप क्यों करेंगी। हाँ,
0: लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी, आपकी
1: तो बड़ी हो गई
0: दुनिया बन चुकी थी, आपके भी अपने सपने थे, अपने शौक थे।
1: हाँ, तो तब माँ ने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी। जाएगी बाहर जाके, मैं बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्रॉइंग, देखो देखो मेरी बेटी ने आज ये पेंटिंग बनाया, वो फिर गर्व महसूस करने लगे।
0: मित्र जी कहते हैं कि माँ कवि निराला भी उनकी कविताओं और उनकी आवाज की प्रशंसक थे, क्या ये बात सच है?
1: बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा कवि देखा

0: तो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा ऐसा।
1: जी, तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे प्रदीप जी
0: हाँ,
1: ने?
0: रोमांटिक गीत भी अच्छे अच्छे लिखे हैं और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं
1: हाँ
0: कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है
1: खूबसूरती
0: कि
1: के
0: मेरे
1: साथ,
0: जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो
1: बोलो
0: तुम
1: तुम
0: कौन
1: कौन
0: हो,
1: हो?
0: बोलो तुम
1: आहा,
0: कौन
1: क्या
0: हो।
1: बात है, क्या
0: हाँ,
1: बात
0: तो
1: है
0: मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले,
1: जी।
0: कितना सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहाँ हम थे, ना जाने कहाँ
1: तुम
0: तुम।
1: थे,
0: हाँ,
1: आहा,
0: तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर है। और एक हल्का फुल्का सा गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था, ओ दिलदार बोलो एक बार
1: क्या मेरा
0: क्या
1: प्यार
0: मेरा
1: पसंद है
0: प्यार
1: तुम्हें?
0: पसंद है। तो ये भी कितना सुंदर सुंदर से
1: बहुत
0: गीत है
1: बहुत स्वीट।
0: और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है,
1: हर पल के गीत है ये,
0: हर
1: हर
0: पल के। तो
1: मौके
0: ये
1: के गीत है।
0: रोमांटिक गाने भी उन्होंने लिखे
1: जी
0: और ज्यादातर युगल गीत थे ये।
2: करतार बड़ा तेरा प्यार पसंद है हमें।
3: ये उलझे उलझे बात, ये मस्ती भरी चाल।

0: काहे की फिकर
1: वो करो के देखा को मेरे दिल में घर बोलो जादू
0: हम तो कभी के हुए तेरे दिल भर अब काहे की फिकर।

0: है हमें
1: मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अभी रोमांटिक गाने उनके सुने भी सही और बात भी की हमने।
2: जी जी बिल्कुल।
1: उन्होंने कविता शुरू की

0: किए तभी तुम हुआ रहस्योद्घाटन।
1: क्या बात है।
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो।
1: हाँ।
0: मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय तुम
1: हो। क्या बात है।
0: तो ये
1: रुमानियत कितनी गहरी।
0: तो मतलब ये है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्तिक है
1: उसकी
0: कुमकुम हो।
1: बहुत सुंदर, जिस तरह से उपाधियां दी है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रवीण जी ने।
0: ये भी उनकी एक कविता है जो रोमांस पे है
1: जी। और ये खासियत है कि इतना बड़ा कवि जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा कर दी, जिन्होंने देश प्रेम लोगों के दिलों में पैदा कर दिया, वो कभी रुमानियत के उस माहौल में भी थे जहाँ रुमानी कविता उनकी कलम से निकली, रुमानी गीत निकले इतने शानदार तरीके से, जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप जी के लिए, बताइए कैसे।
0: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा
1: जी,
0: लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला 98 में
1: जी।
0: दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन तब भी वहां के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे।
1: किस बात पे?
0: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा कि हमको चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे
1: जी।
0: फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए नहीं, हमारे लिए आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी गौरव बढ़ाएगा और आपको मिलेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी
1: जी।
0: और उनको लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा। तो हम सबने कहा कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से ले जाएंगे, व्हील चेयर में ले जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हील चेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए कोई व्यक्ति को लेके गए और आगे चल के प्रेसिडेंट आए। प्रेसिडेंट कभी भी आगे नहीं चलते हैं, वो वहीं खड़े रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसे ही उनकी व्हील चेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देश के और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है पूरे उसमें गूंजा।
1: क्या बात है।
0: विज्ञान भवन में कार्यक्रम था
1: जी।
0: और वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है, तो वो नियम को तोड़ा गया। उस स्टेज पे हम लेके गए उनको और वो गाना बजा और आप नहीं मानेंगे उस वक्त भी खड़े खड़े खड़े लोग रोए हैं
1: जी।
0: और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए। यश चोपड़ा जी वहां खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया
1: जी।
0: वो भी ऑडियंस में थे
1: जी। और कभी प्रदीप जी के चेहरे पर कहीं सुख और संतोष के चिन्ह नजर आए ना, कि वो संतुष्ट थे।
0: वो संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता। लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य है
1: जी। बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
0: जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए।
1: चलिए सुनते हैं, ये बेहद खूबसूरत
0: बहुत सुंदर गीत है।

0: मितुल जी, जब बात चल रही है कवि प्रदीप जी की, तो कविता और लेखन तो खैर उनका मुख्य काम था जिसमें वो बह रहे थे और कहें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे? उनके और क्या क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था।
0: हाँ,
1: तो हमारे ऊपर टेरेस है, तो उसपे वो चले जाते थे और कई चीजें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे। दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे, और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जाम्बू, जाम्बू समझते हैं आप, सफेद वाले, जिसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सफेद जाम्बू, काले नहीं, सफेद
0: सफेद,
1: खैर एनीवे, वाटर एप्पल या से कुछ बोलते हैं, जो भी होगा, उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं, वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं।
0: क्या बात है।
1: जब हमारा घर बना, तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए,
0: अच्छा,
1: तो वो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना दे, माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं।
0: क्या बात है।
1: और एक कड़ी पत्ता, उसका एक छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है और वो आज भी है उनका लगाया हुआ।
0: जी, उनकी याद दिलाता होगा।
1: तो सभी मतलब वृक्ष जो है उनकी याद दिलाता है।
0: हाँ, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका घर ऐतिहासिक है और कवि प्रदीप जी ने बहुत ही शौक के साथ उस घर को बनाया, बहुत रुचि के साथ, तो बताइए क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया?
1: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के, उनको जैसे लगवा रहे थे तो वह खड़े रहते थे, ये नहीं कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को कि आप बना लो, नहीं, रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए, सीमेंट। आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप।
0: अच्छा?
1: इतनी मजबूत है।
0: क्या बात
1: है, इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर,
0: मंदिर है। जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ
1: जी
0: उसको खड़ा किया।
1: हाँ
0: जी। मितुल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है, अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ।
1: ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ।
0: जी
1: जी। और मेरा आर्ट सेंटर है तुली का आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं, और जब मैंने शुरू किया 1982 में, तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ?
0: जी,
1: मैं जब छोटी थी, 2-3 साल की या 4 साल की रही होगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि ये लो, इस पे तुम स्वस्तिक ड्रॉ करो। एक कागज दिया और एक पेंसिल दी और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे ने लाइन कर करके स्वस्तिक ड्रॉ किया।
0: जी।
1: मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स बनाती थी। उनमें से मुझ में आया।
0: जी।
1: तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो, माँ की कला है वो मुझ में आई, तो वो जीन्स में आया। तो वहां से शुरू हुआ। फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा ये लो, हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो, ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो होते हैं ना,
0: लक्ष्मी के, नवरात्रि में मनाया था, दीपावली में,
1: दीपावली में, तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी, तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कुछ और करना था। मुझे
0: ये तो आपने बचपन की बात बताई जब माँ आपको ऐसा कहा करती थी।
1: लेकिन बीच में मेरा वो बिल्कुल चला गया कि मुझे कुछ करना है, ड्राइंग नहीं नहीं मुझे वो मजा नहीं आता है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे कुछ और कुछ करना है। तो पढ़ाई चलती रही, लेकिन उस बीच में मुझे ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कलर्स बनाती है, उनकी मालकिन मिली
0: जी,
1: बोलती है आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है, सुना है। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं, उनको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारी टीचर नहीं है। मैंने बोला मैं सिखा तो नहीं सकती हूँ। बोलती नहीं सिखा पाओगे, कोशिश तो करिए। और वो तब की बात है जब पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं, आप देखिए कोशिश करिए सिखाइए। मैं बोला ठीक है कोशिश करते हैं। क्या करना था, कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था, कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना था। उन्होंने कहा ये रहा हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास तुलिका है, मतलब ब्रशेस हैं, आप आइए सिखाइए। कैसे सिखाना, हमने कोशिश की, सब खुश हो गए। मैं सक्सेसफुल हो गई सिखाने में।
0: जी जी।
1: तो वो भी मेरे अनायास हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि जो एक लिखा हुआ होता है, आपके क्या कर्म है आपके कर्मों में, मतलब जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में वही हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि ये टीचर बनेगी।
0: अच्छा।
1: तो वो टीचर तो नहीं बनी स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन गई।
0: जी।
1: तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं खुश हो गई, वो जो कलर बनाने वाली कंपनी के वो लोग थे वो खुश हो गए, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा सिखाया, और हमारे पास लोग हैं उनको भी सिखाइए, हमारे वहां डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आप पेंटिंग के। तो ये ऐसे शुरू हो गया। तो मेरी पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट की, मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन साथ साथ में ये भी चलता रहा। तो उसमें से मुझे मेरी एक पूरी जिंदगी का पूरा ट्रेंड बदल गया,
0: मकसद मिल गया।
1: और सिखाने में जो आनंद है वो समझ में आया कि जब स्टूडेंट आपके साथ में खड़े होके खुश होके जाते हैं वो बात ही अलग है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब गुरु बनते हैं ना तो गुरु की और शिष्य की जो परंपरा है वो एक आपको अलग ही माहौल में ले जाती है और आपका जीवन बदल जाता है।
0: सुख दुख

0: कभी था।
1: मिथुन जी, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपने अपनी जो आरंभिक शिक्षा थी वो अपनी माँ से ही ली, आपकी माँ ही आपकी गुरु रही।
2: जी जी, एकदम से माँ ही गुरु रही। मैं बताऊं कि जब तक थी तब तक हमको लगता था कि नहीं, वो हमसे ज्यादा ही अच्छा करती हैं। क्योंकि उनकी भी एक आखिरी बात बता दूं कि वो जब मेरे पिता चले गए 98 में, उसके बाद में उन्होंने जितना जीवन जिया, वो एक तो रेडियो सुनती थी और दूसरा उनका काम था ड्राइंग करना। जैसे ही वो फ्री हो जाती, हाथ में कलम और हाथ में कोई भी, जैसे पेपर आ गया कोई भी सफेद रंग का, कोई भी हाथ में कलम लेके उसमें ड्राइंग करना शुरू कर दें। तो आज हमारे पास उनके हजारों ड्राइंग्स हैं।
1: अच्छा,
2: मेरे पिता के चले जाने के बाद और उनके चले जाने के बीच के उतने सारे उन्होंने ड्राइंग बनाए, पूरी रात दिन जब भी उनको समय मिला, कोई भी दूसरा सोचना नहीं, कुछ गलत सोचना नहीं, कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेना, ड्राइंग करते।
1: तो आपके लिए एक बहुमूल्य चीज है वो, तो
2: बहुत बहुमूल्य चीज है मेरे पास, आज खजाना है।
1: बिल्कुल, आपने उस विधा को प्राप्त कर लिया जो हम कहीं सीख कर भी नहीं सीख पाते, है ना? वो गुरु ज्ञान उतनी शिद्दत और बारीकी से नहीं दे पाता कोई, जो आपने अपनी माँ से सीख लिया है। तो आज जब आप अपने बच्चे तैयार कर रही हैं, आपके यहाँ शिष्य आते हैं, आप उन्हें सिखा रही हैं, उनका भविष्य सुधार रही हैं, किस तरह की पेंटिंग सिखाती हैं बच्चों को आप?
2: वैसे मैं सभी कुछ सिखाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग में मंदा के नीचे ऐसा है कि उसमें आकाश ही जिसका मतलब अंत है, इतना सारा है, अनंत है। आप क्या सिखाएं, जिसमें आप ड्राइंग सिखाएं, आप कलर सिखाएं, आप चारकोल सिखाएं, आप हाथ से मिट्टी के आप सामान सिखाइए, आप स्कल्पचर सिखाइए, वो सब हम सिखाते हैं। और वो मैं सिखाती हूँ खुद भी, और मेरे साथ मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं। तो सिखाने का तो बहुत सारा है, लेकिन मैं खुद क्या अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे ऑयल कलर्स अच्छे लगते हैं।
1: ऑयल पेंटिंग
2: जो ऑयल पेंटिंग का एक अलग सा रहता है और वाटर कलर अलग रहता है। तो पहले ऑयल पेंटिंग, दूसरा वाटर कलर। तो उसमें आपको बहुत स्वतंत्रता मिलती है, आप जो करना चाहो, तो वो स्वतंत्र जो होता है ना, वो अच्छा लगता है। कहीं पर आप बंधते नहीं हो। अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं तो आप वहां बंध जाते हैं।
1: जी,
2: लेकिन कैनवास के ऊपर आप बंधते नहीं।
1: क्या गढ़ते हैं, क्या पेंट करते हैं, आपका अपनी कल्पना शक्ति पर,
2: तो वो कल्पना शक्ति उसमें बहुत ज्यादा स्वतंत्र है।
1: तो आपकी तो आर्ट गैलरी भी लगती है, कहाँ कहाँ आप जाती हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर, और अभी तक कितनी सारी जो है आपने आर्ट?
2: आपको एक बात ये बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं करती हूँ।
1: अच्छा जी,
2: अगर मैं अपना एग्जीबिशन लगाती हूँ तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाती हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं खुद ही इसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी पेंटिंग का मूल्य क्या होगा।
1: जी जी जी,
2: तो ज्यादातर मेरे जो भी जितने भी मेरे

0: है मेरी वो है, तो मैं अपने लिए रखती हूँ, लोगों को डिस्प्ले के लिए मैं बनाते जाती हूँ, लेकिन मैं बेचती नहीं हूँ। तो जब भी मेरा एग्जीबिशन लगता है, कई जगह पे लगा, और हमारी खुद की आर्ट गैलरी बड़ी है जहां पर हम क्लासेस चलाते हैं, तो वहां पर भी हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह रहता है, तो लोग आते हैं देखते हैं। अगर कोई ऑर्डर देना चाहे कि भाई आपका ये बहुत अच्छा है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर उसको छोड़ते हैं, जो स्टूडेंट्स बना के उनको देते हैं।
1: बहुत बड़ी बात, आपने अपनी कला को मतलब कमर्शियल रूप में नहीं देखा है, नहीं। अपनी कला को एक कला प्रति रहने दिया है,
0: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना मूल्य लगाऊंगी ना, तो हो सकता है कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब मेरा जो व्याप है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं उसका मूल्य नहीं करती हूँ, वो वैसे ही रहता है वहां पर। आप मेरे कभी आर्ट गैलरी में आएंगे देखने के लिए,
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे हुए होते हैं।
1: तो पहले बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: सबसे अच्छा रहेगा ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, क्योंकि हम अभी व्याप की बात कर रहे हैं और आसमान की बात
1: कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।
0: जी।

ने रचा एक अद्भुत प्राणी जिसका नाम इंसान तूने रचा एक अद्भुत

आय मालिक तूने किया कमाल, ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल, अरे वाह मेरे मालिक क्या तेरी लीला तूने किया कमाल, तूने किया कमाल।

0: वाह मितुल जी, गीत को सुनने के बाद तो क्या कहे, मतलब अचानक एक अलग सी फीलिंग्स आई है। बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही गहरा गीत। तो मितुल जी, जब बात चल रही है आपकी पेंटिंग्स की, आपकी कलाकृति के बारे में, तो किस तरह की है ये कलाकृति, किस तरह की कला आप बच्चों को सिखा रही है या आप खुद कैनवास पर उतारती हैं इन कलाओं को?
1: मेरे पास जैसे अलग अलग विधा है, अलग अलग टाइप के मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, लेकिन जैसे समय बदलता है तो उस हिसाब से हम एब्स्ट्रैक्ट आजकल बहुत चला है
0: जी।
1: लोगों के पास जैसे मैंने कहा बहुत स्ट्रेसफुल लोगों के जीवन है, तो कहते हैं हमको 2 दिन में खत्म करना है तो क्या कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी है कि जिसमें आप 2 दिन में अपना मन का जो पेंटिंग है वो पूरा कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर आपके पास समय है तो आप अच्छा सा पोर्ट्रेट करिए। पोर्ट्रेट करने में समय लगता है, अगर समय लगेगा तो आपको उतना कॉन्सेंट्रेशन करना है, ये दिमाग के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों को सिखाना जरूरी है कि आप कॉन्सेंट्रेट करिए, मन को शांत रखिए। तो उसके लिए पोर्ट्रेट है, चारकोल है, चारकोल एक ऐसा माध्यम है जो पाउडर है, वो पाउडर से आप पूरी कला को आप कैनवस पे उतारिए
0: जी।
1: तो ये एक है। और देवी देवताओं के जो पेंटिंग्स आजकल लोग बनाते हैं तो उसमें अलग अलग हीरे जवाहरात, मतलब आर्टिफिशियल, वो लगा के करते हैं तो उसको मिक्स मीडिया बोलते हैं।
0: ठीक,
1: तो मिक्स मीडिया पेंटिंग भी मैं कराती हूँ, है ना। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग समय पे और अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग तरीके का करवाया, थोड़े बड़े हैं तो उनको अलग करवाया। बहुत बड़ी उम्र के लोग मेरे पास आते हैं, 80-80 साल की महिलाएं आती हैं सीखने के लिए।
0: अच्छा जी, तो वो क्या सीखना पसंद करती हैं?
1: वो कैनवस पे पेंटिंग करना सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है। कपड़े पे पेंटिंग करना, तो अभी मेरे पास 2 हैं वैसी जो 80 साल के ऊपर की हैं, तो वो लोग दोनों कपड़े पे स्कार्फ बनाती हैं और अपने बच्चों को, बच्चे के बच्चों को, सबको गिफ्ट देती हैं। तो अपना बनाया हुआ किसी को देना तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा बहुत सारा जो अलग तरीके का, अलग टाइप के लोग हैं उनके लिए हम स्पेशली उनको समझाते हैं कि आप ये करिए।
0: मॉडर्न आर्ट है,
1: मॉडर्न आर्ट है,
0: इस तरह का, सभी तरह के।
1: मॉडर्न आर्ट भी बहुत चलता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है वैसे मॉडर्न आर्ट। और बड़े बड़े कलाकारों की, जैसे बहुत बड़े मास्टर्स हो गए ना पुराने, वैन गॉग है या वैसे, उनके मास्टर्स की पेंटिंग हम सिखाते हैं कि देखिए उनका कैसा था और उनके ऊपर से आप इसको, आप अपने पेंटिंग बनाइए।
0: तो मितुल जी, हमारे देश में कहें या पूरे संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, पेंटर हुए हैं, आप किनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
1: मेरी माँ से उनका जैसा कोई नहीं
0: बहुत सुंदर।

0: मित्र जी, आपने बताया कि आप इतने प्रकार की कलाएं जो हैं बच्चों को सिखाती हैं, जब इनसे आप फ्री होती हैं, अपनी पेंटिंग की दुनिया से आप अलग होती हैं, कला की दुनिया से अलग होती हैं, तो क्या करती हैं? इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक हैं? हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे।
1: मेरे शौक में मैंने भी गार्डनिंग को अपना शौक बनाया, लेकिन सबसे बड़ा तो आपको आश्चर्य ये होगा कि मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां, कुत्ते और खुले में रहने वाले बहुत सारे पंछी हैं।
0: अच्छा,
1: तो खुले में रहने वाले मतलब मेरे घर में बंद नहीं है।
0: हाँ हाँ।
1: लेकिन वो मेरे अपने हैं। जो कौवे हैं, पैरट्स हैं, तोते हैं, छोटी छोटी गिलहरियां हैं,
0: वो आपके घर की आजू बाजू रहती है
1: और रोज खाने के लिए आती है। तो बिल्लियां और कुत्ते तो घर में रहते हैं और ये सब पूरा माहौल जो है पूरा जैसे एक जंगल जैसा माहौल है। और मेरे पिता ने एक गीत लिखा था, बापू ने, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे चोली। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान में कोई छोटा अगर बच्चा भी आ गया बिल्ली का, तो ये तो नहीं पता हमको कि ये भगवान है कि नहीं है। हो सकता है छोटा रूप लेके आए हैं, हो सकता है कि वो एक कौवा बैठा हुआ है, वो भी एक भगवान का स्वरूप है, तो वो आपके पास पानी या खाना मांगने आया है। तो कभी भी किसी को निकालो मत घर से, भूखा मत भेजो। तो ये है तेरे द्वार खड़ा भगवान, तो ये सब भगवान है हमारे लिए।
0: तो कितनी बिल्लियां पाली हैं आपने और कितने कुत्ते पाल रखे हैं?
1: अभी तो 4 कुत्ते हैं और 40 बिल्लियां हैं।
0: क्या कह रही हैं?
1: हाँ जी,
0: 4 कुत्ते और 40 बिल्लियां, और कुत्ते बिल्ली साथ रहते हैं?
1: साथ रहते हैं और कुत्ते बिल्लियों से डरते हैं।
0: ये तो आप मजाक कर रही हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, बहुत सही कह रही हूँ। हमारी बिल्लियां बहुत ही तेज है, तगड़ी है, बड़ी और कुत्तों को डराती है।
0: 40 बिल्लियों को आप कैसे पालती हैं?
1: बस वो हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि सब भगवान के आशीर्वाद है तो हो जाता है सब।
0: जी जी जी, तो बहुत बहुत मतलब एक अद्भुत बात आप कह रहे हैं, और इतना आश्चर्य हो रहा है कि 40 बिल्लियां आपने पाल रखी है, वो आपके परिवार के सदस्य हो गए।
1: वो परिवार है और सबके नाम है।
0: जी, जैसे
1: जैसे जिंजर है, जैसे कालू है।
0: अच्छा,
1: है ना। जैसे ब्राउनी है।
0: हाँ,
1: ब्लैकी है,
0: उनको पता ही उनके नाम।
1: हाँ, हाँ, सिम्बा है, बहुत सारे हैं। अजीब अजीब नाम भी है, जैसे टिनटिन है तो दूसरा है चिनचिन। जैसे चुन चुन भी है। सो किटकैट भी है।
0: अच्छा, so, ये सभी बिल्ली आपका कहना मानती है?
1: हाँ, हाँ, मानती भी है और सामने गुस्सा भी करती है। क्या बहुत हो गया
0: जी। कभी ऐसा हुआ कि इन बिल्लियों ने गुस्से में आकर आपकी ही पेंटिंग को फाड़ दिया हो, खुरच दिया हो अपने नाखूनों से, और आपको बहुत गुस्सा आया हो इन पर?
1: ऐसा हाँ करते हैं कभी कभी, लेकिन गुस्सा नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर।

0: यानी कि आपके घर में एक भरा पूरा जंगल है।
1: पूरा पूरा जंगल है, और बहुत मेहरबानी है कि कभी कभी मैं चेयर पे बैठ सकती हूँ।
0: तो मितुल जी, आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें, तेरे द्वार खड़ा भगवान।
1: जरूर सुनवाइए, जरूर सुनवाइए।

0: नकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान भगत भर दे रे।
1: अब हम बस चलते चलाते आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे महान कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल जी और एक बहुत बड़ी कलाकार पेंटर मितुल वो क्या कहना चाहती है अपने श्रोताओं को अपने पिता के बारे में और अपने बारे में।
2: पिता के बारे में तो यही है कि बस उनके जो संदेश हैं उसको आप मन से सुनिए, आत्मसात कीजिए और देश को सबसे आगे रखिए। ऊंच नीच या कौन क्या है वो मत सोचिए और प्रेम से जिंदा रहिए एक दूसरे के साथ
1: जी।
2: और मैं ये कहना चाहूंगी कि कला एक ऐसा माध्यम है जो मैंने देखा है बहुत करीब से, उसको अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो जीवन की कई मुश्किलें कई स्ट्रेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कला को अपनाइए
1: जी,
2: चाहे कोई भी कला हो उसको अपनाइए
1: जी। बहुत खूब बहुत शानदार। मितुल जी आप स्टूडियो में आई हैं और आपने आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपने पिता कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद किया, हमारे साथ उनकी जिंदगी को साझा किया, उनकी बातों को उनके लेखन को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए निकाला, आपके हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
2: मैं आभारी हूँ विविध भारती, मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारी रग रग में बसा है
1: जी,
2: और आपके साथ बात करके यहाँ सबसे मिलके बहुत खुशी हुई
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: प्रिया एक बार फिर से विविध भारती में आने के लिए। और दोस्तों, उजाले उनकी यादों की इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से। और आज की बातचीत बस यही तक। अब मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत, नमस्कार।
1: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों की कार्यक्रम समाप्त होता है।
2: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी तरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनोरी।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से सुन रहे थे। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। लीजिए आप सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

0: युवानी सुनने वाले सभी युवा साथियों को क्षितिज शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 14 जून को पूरी दुनिया में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उन लाखों लोगों को समर्पित हैं जो स्वेच्छा से रक्तदान कर अनगिनत जिंदगियों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथियों, रक्तदान केवल एक सामाजिक सेवा नहीं बल्कि मानवता की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले शुरुआत करते हैं विश्व रक्तदाता दिवस पर और जानते हैं इस दिवस के बारे में। दोस्तों, हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना, सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना और नियमित रूप से रक्तदान करने वाले दाताओं का सम्मान करना है। ये दिन आधुनिक रक्त समूह प्रणाली के खोजकर्ता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, जिनके योगदान ने रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सुरक्षित और प्रभावी बनाया। साथियों, रक्त यानी कि खून मानव शरीर का एक ऐसा महत्वपूर्ण घटक है जिसका कोई कृत्रिम विकल्प आज तक विकसित नहीं हो सका है। दुर्घटनाओं में घायल लोगों, बड़ी सर्जरी से गुजर रहे मरीजों, प्रसूति के दौरान महिलाओं, कैंसर रोगियों और थैलासीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को समय समय पर रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में स्वैच्छिक रक्तदाता अब किसी अनजान व्यक्ति के लिए जीवनदाता बन जाते हैं। तो दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस पर इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक अल्पविराम।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: दोस्तों, हम बात कर रहे थे विश्व रक्तदाता दिवस की। साथियों, विशेषज्ञों का कहना है कि एक यूनिट रक्त से 3 अलग अलग मरीजों की मदद की जा सकती है। रक्त को विभिन्न घटकों जैसे कि लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स में विभाजित कर अलग अलग जरूरत के अनुसार उपयोग किया जाता है और यही कारण है कि रक्तदान को महादान कहा जाता है। हालांकि जागरूकता बढ़ने के बावजूद अभी भी कई क्षेत्रों में सुरक्षित रक्त की कमी देखने को मिलती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यदि स्वस्थ और योग्य नियमित रूप से रक्तदान करें तो रक्त की कमी की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। साथियों, रक्तदान की प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित होती है और इसे दाता के स्वास्थ्य पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। सामान्यतः अगर हम देखें तो 18 वर्ष की आयु से लेकर 65 वर्ष तक की आयु के सभी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। साथियों, विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर देश भर में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, सामाजिक संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविरों में बड़ी संख्या में युवा, छात्र, कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेकर रक्तदान करते हैं। कई स्थानों पर नियमित रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोग इस नेक कार्य के लिए प्रेरित हों और रक्तदान कर सके। साथियों, रक्तदान से जुड़े कई भ्रम आज भी समाज में मौजूद हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है या स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जबकि चिकित्सकीय दृष्टि से ये धारणा बिल्कुल गलत है। निर्धारित अंतराल पर किया गया रक्तदान न केवल सुरक्षित है बल्कि इससे स्वास्थ्य जाँच का अवसर भी मिलता है और शरीर में नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया भी सक्रिय होती है। दोस्तों आज के दिन ये समझना जरूरी है कि रक्तदान केवल एक दिन का अभियान नहीं बल्कि एक निरंतर सामाजिक जिम्मेदारी है। किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे समय में एक स्वैच्छिक रक्तदाता की मदद किसी परिवार के लिए नई उम्मीद लेकर आती है। रक्तदान का महत्व केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं बल्कि ये समाज में सहयोग संवेदनशीलता और मानवता की भावना को भी मजबूत करता है। तो साथियों अभी फिर से लेते हैं एक अल्पविराम और उसके बाद इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों हम बात करें हैं विश्व रक्तदाता दिवस पर। ये दिन उन लाखों स्वैच्छिक रक्तदाताओं को समर्पित हैं जो निस्वार्थ भाव से रक्तदान कर अनगिनत लोगों की जान बचाने में योगदान देते हैं। रक्त की आवश्यकता दुर्घटनाओं, बड़ी सर्जरी, प्रसव, कैंसर उपचार और थैलेसीमिया जैसे रोगों से जूझ रहे मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित होते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी तक भी इसका कोई भी कृत्रिम विकल्प उपलब्ध नहीं है, इसीलिए सुरक्षित और पर्याप्त रक्त की आपूर्ति केवल नियमित और स्वैच्छिक रक्तदान से ही संभव है। कई देशों में आज भी रक्त की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसीलिए हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम मानवता, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी के संदेश को आगे बढ़ाती है। नियमित स्वैच्छिक रक्तदान से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाया जा सकता है और जरूरतमंद मरीजों तक समय पर सुरक्षित रक्त भी पहुंचाया जा सकता है। साथियों रक्तदान एक ऐसा महादान है जिससे एक व्यक्ति कई लोगों की जान बचाने में मदद कर सकता है। स्वस्थ नागरिकों को नियमित रूप से रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। साथियों विश्व रक्तदाता दिवस हमें ये संदेश देता है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप स्वस्थ हैं और रक्तदान के लिए पात्र हैं तो आगे आएं और इस जीवनदायी अभियान का हिस्सा बनें। साथियों हमें ये याद रखना चाहिए कि रक्तदान का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आपका रक्त किसी के जीवन का नया आधार बन सकता है। तो साथियों ये थी विश्व रक्तदाता दिवस पर छोटी सी जानकारी। अभी आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये थी।

Yeah.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म धूम से ये गीत, आवाज थी सुनिधि चौहान की, गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत था प्रीतम चक्रवर्ती का। साथियों, आज कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अटल भूजल योजना की, जो देश में भूजल संरक्षण और जल प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। साथियों, भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहाँ भूजल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। कृषि, पेयजल और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश की बड़ी आबादी भूजल पर निर्भर है, लेकिन लगातार बढ़ते दोहन, अनियमित वर्षा और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता की कमी के कारण कई क्षेत्रों में भूजल स्तर तेजी से घट रहा है।

0: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चयनित जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में किया जा रहा है। इन राज्यों के हजारों ग्राम पंचायतों को इस योजना से जोड़ा गया है और योजना का उद्देश्य केवल सरकारी प्रयासों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्थानीय समुदायों, किसानों और ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। साथियों, इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है जन भागीदारी आधारित जल प्रबंधन, और इसके तहत गांव स्तर पर जल बजट तैयार किए जाते हैं और जिनमें यह आकलन किया जाता है कि किसी क्षेत्र में कितना पानी उपलब्ध है और उसका उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाता है और वर्षा जल संचयन, जल पुनर्भरण और पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। साथियों, कृषि क्षेत्र में भी इस योजना का बहुत महत्व है। किसानों को कम पानी वाली फसलों को अपनाने, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग बढ़ाने और जल दक्षता के सुधार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे न केवल भूजल की बचत होती है बल्कि किसानों की लागत भी कम होती है और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। तो साथियों, इस पर ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक अल्प विराम।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: दोस्तों, हम बात कर रहे थे अटल भूजल योजना की। साथियों, विशेषज्ञों का मानना है कि केवल नए जल स्रोत विकसित करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उपलब्ध जल संसाधनों का वैज्ञानिक और टिकाऊ प्रबंधन भी उतना ही आवश्यक है। अटल भूजल योजना इसी सोच पर आधारित है। इसके माध्यम से आधुनिक तकनीक, भूजल निगरानी प्रणाली और सामुदायिक सहभागिता को एक साथ जोड़कर जल संरक्षण का मजबूत मॉडल विकसित किया जा रहा है। हमारे राजस्थान जैसे जल संकट से प्रभावित राज्यों में इस योजना का विशेष महत्व है। यहाँ ग्राम पंचायतों में जल सुरक्षा योजनाएं तैयार की जा रही है और लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कई क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण की गतिविधियों के सकारात्मक परिणाम भी हमें देखने को मिले हैं। इसीलिए दोस्तों, अटल भूजल योजना केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक राष्ट्रीय अभियान है। यदि समाज, सरकार और स्थानीय समुदाय मिलकर जल संरक्षण के प्रयासों को आगे बढ़ाएं तो भूजल संकट की चुनौती का हम प्रभावी समाधान कर सकते हैं। तो साथियों, अभी फिर से वक्त उछला है अल्पविराम का, तो आइए लेते हैं एक अल्पविराम।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों आइए अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं अगला गीत।

मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहा दिल खो गया, न जाने कहा दिल खो गया, न जाने कहा दिल खो गया, न जाने कहा दिल

हाल है, हाल मेरा बेहाल है, पूछो जरा पूछो क्या हाल है। हाल मेरा बेहाल है, कोई समझ न पाए क्या रोग सताए, कोई जाए जरा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में गीत, फिल्म का नाम था दिल। गीत के बोल थे समीर के और संगीत था आनंद श्रीवास्तव का। साथियों, आज का जो वर्तमान युग है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। आज विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं और शोध संस्थानों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन, उद्योग, चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष, सूचना और पर्यावरण संरक्षण जैसे अनेक क्षेत्रों का आधार बन चुका है। विज्ञान की बढ़ती भूमिका के साथ साथ इस क्षेत्र में करियर की संभावनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। एक समय था जब विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए मुख्य रूप से डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक बनने के विकल्प ही प्रमुख माने जाते थे, लेकिन आज विज्ञान का ये जो क्षेत्र है वो अत्यंत ही व्यापक हो चुका है। नई तकनीकों और नवाचारों ने करियर के अनेक नए द्वार खोल दिए हैं। आज युवा अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में सफल करियर बना सकते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान आज भी सबसे लोकप्रिय क्षेत्रों में से एक है। डॉक्टर, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल रिसर्चर, फार्मासिस्ट और बायोटेक्नोलॉजी विशेषज्ञों की मांग लगातार बढ़ रही है। आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के विकास के साथ इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। साथियों, कंप्यूटर विज्ञान आज के समय के सबसे तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित युवाओं की भारी मांग है। डिजिटल युग में लगभग हर उद्योग को तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ गई है। साथ ही दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान भी युवाओं को आकर्षित करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों ने अनेक छात्रों को वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा दी है। खगोल विज्ञान, उपग्रह, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य मौजूद है। इसके अलावा पर्यावरण विज्ञान और जलवायु परिवर्तन से जुड़े क्षेत्र भी आज विशेष महत्व प्राप्त कर रहे हैं। बढ़ते पर्यावरणीय संकटों के कारण पर्यावरण विशेषज्ञों, जल संरक्षण विशेषज्ञों और नवीकरणीय ऊर्जा वैज्ञानिकों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर विकसित हो रहे हैं। तो साथियों, विज्ञान जगत पर ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक अल्पविराम।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: साथियों, कृषि विज्ञान में भी आधुनिक तकनीकों के प्रयोग ने करियर की नई संभावनाएं उत्पन्न की है। कृषि अनुसंधान, खाद्य प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और कृषि इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में युवा अपना भविष्य बना सकते हैं। वैज्ञानिक खेती और कृषि नवाचार देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा शोध और विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्षेत्र भी विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों में वैज्ञानिक शोधकर्ता और विश्लेषक के रूप में कार्य करने के अवसर उपलब्ध हैं। विज्ञान में अनुसंधान केवल नई खोजों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की आज की समस्याओं के समाधान खोजने का भी माध्यम है। साथियों, आज आवश्यकता केवल डिग्री प्राप्त करने की नहीं, बल्कि कौशल, नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की है। जो युवा जिज्ञासु हैं, नई चीजें सीखने की इच्छा है और समस्याओं का समाधान खोजने में रुचि रखते हैं, उनके लिए विज्ञान जगत अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। तो साथियों, यही मैं कहना चाहूंगा कि आधुनिक समय में विज्ञान केवल एक विषय नहीं बल्कि अवसरों का एक विशाल संसार है। विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाकर युवा न केवल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं बल्कि देश और मानवता के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ आइए आपको फिर से ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं अगला गीत।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में गीत। फिल्म का नाम था गदर प्रेम कथा। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्श ने और संगीत था उत्तम सिंह का। साथियों आइए अब बात करते हैं स्किल इंडिया मिशन की। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल स्किल इंडिया मिशन, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को रोजगार उन्मुख कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। बदलते समय में केवल डिग्री नहीं बल्कि व्यावहारिक कौशल भी सफलता की कुंजी बन चुका है और इसी सोच के साथ शुरू किया गया है स्किल इंडिया अभियान। तो आइए जानते हैं इस अभियान के बारे में। साथियों भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। देश की बड़ी आबादी युवा है और यही युवा शक्ति भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। लेकिन लंबे समय तक ये बड़ी चुनौती यह रही है कि शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद अनेक युवाओं के पास उद्योगों और रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल ही नहीं था। और इसी चुनौती को अवसर में बदलने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में भारत सरकार ने स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की। स्किल इंडिया का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है। ये अभियान देश में कौशल विकास को एक जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास है। इसके अंतर्गत युवाओं को तकनीकी, व्यावसायिक और उद्यमिता संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। साथियों स्किल इंडिया मिशन के तहत अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI, अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम और विभिन्न सेक्टर स्किल काउंसिलों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। इन योजनाओं के जरिए युवाओं को आधुनिक उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें और स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सके। दोस्तों आज के दौर में कौशल विकास केवल रोजगार पाने का माध्यम नहीं बल्कि आर्थिक प्रगति और सामाजिक सशक्तिकरण का आधार भी है। डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन, निर्माण कार्य, कृषि और सेवा क्षेत्र जैसे अनेक क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन की मांग तेजी से बढ़ रही है। स्किल इंडिया मिशन इन जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस अभियान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवाओं, महिला और वंचित वर्गों को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कई प्रशिक्षण केंद्रों में युवाओं को सिलाई, फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर संचालन, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन कार्य, प्लम्बिंग, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य व्यावसायिक कौशलों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में स्किल इंडिया के तहत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। कई युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और अपने साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। तो साथियों इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक अल्पविराम।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर PM सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: साथियों, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्किल इंडिया के बारे में। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत को वैश्विक कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करने की अपार संभावना है और इसके लिए आवश्यक है कि युवा नई तकनीकों को अपनाएं, निरंतर सीखते रहें और अपने कौशल को समय के अनुसार विकसित करते रहें। स्किल इंडिया मिशन इसी दिशा में एक मजबूत आधार तैयार कर रहा है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। तेजी से बदलती तकनीक, उद्योगों की बदलती आवश्यकताएं और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास कार्यक्रमों को लगातार अद्यतन करना आवश्यक है। सरकार, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय से इस मिशन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो साथियों, कौशल ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मविश्वास, रोजगार और सम्मानजनक जीवन प्रदान करती है। स्किल इंडिया मिशन न केवल युवाओं के भविष्य को नई दिशा दे रहा है बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और यदि देश का युवा कुशल होगा तो भारत का भविष्य और अधिक मजबूत और समृद्ध होगा। तो साथियों, अब वक्त हो चला है फिर से अल्पविराम का और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: साथियों, भारत में गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप, बढ़ता तापमान और लू जैसी अनेक चुनौतियां लेकर आता है। ऐसे में अगर हमारी दिनचर्या मौसम के अनुकूल नहीं होगी तो हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए अपनी दैनिक आदतों में कुछ बदलाव करना बहुत जरूरी है। गर्मी के मौसम में सबसे महत्वपूर्ण है शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखना। अधिक तापमान के कारण शरीर से पसीने के रूप में पानी और आवश्यक लवण बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। इसके साथ ही नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, लस्सी और फलों के रस जैसे प्राकृतिक पेय पदार्थों का सेवन भी हमें लाभ देता है। ये शरीर को ठंडक प्रदान करता है और ऊर्जा बनाए रखता है। साथ ही दोस्तों, खान पान का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा तले हुए मसालेदार और भारी भोजन के बजाय हल्का और सुपाच्य भोजन ही हमें करना चाहिए। साथ ही मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और आम का संतुलित सेवन शरीर को आवश्यक पोषण और पानी प्रदान करता है। साथियों, दिनचर्या में समय का भी विशेष महत्व है। गर्मियों में सुबह जल्दी उठना और अपने महत्वपूर्ण कार्य सुबह या शाम के अपेक्षाकृत ठंडे समय में करना अधिक उपयुक्त होता है। दोपहर के समय जब सूर्य की किरणें अधिक तीव्र होती है तो अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से हमें बचना चाहिए। यदि बाहर जाना आवश्यक हो तो सिर ढककर या छाता टोपी का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। साथ ही गर्मियों में वस्त्रों का चुनाव भी मौसम अनुरूप होना चाहिए। सूती और हल्के रंग के कपड़े शरीर को आराम देते हैं और गर्मी को कम महसूस होने देते हैं। साथियों, गर्मियों में पर्याप्त नींद लेना भी आवश्यक है। अच्छी नींद शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और मानसिक तनाव को कम करती है। इसके अलावा नियमित व्यायाम और योग को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए, लेकिन अत्यधिक गर्म समय में कठिन शारीरिक गतिविधियों से हमें बचना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, स्वस्थ जीवन का आधार संतुलित और अनुशासित दिनचर्या में है। अगर हम गर्मियों के मौसम के अनुसार अपनी आदतों में आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो न केवल बीमारियों से हम बच सकते हैं बल्कि पूरे मौसम को स्वस्थ, सुरक्षित और आनंददायक भी बना सकते हैं। तो साथियों, आइए अब आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत। फिल्म का नाम था दीवाना। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत था नदीम श्रवण का। तो साथियों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने दोस्त क्षितिज को दीजिए इजाज़त।

अभी युवा साथी युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर है। लीजिए आप सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आकाशवाणी जैसलमेर से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में शाम 6:05 पर सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस का अंत।

रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम विकास यात्रा। कार्यक्रम का निर्देशन करेंगे श्री रामजी लाल मीणा और वाचन स्वर होंगे शरद शर्मा के।

8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। श्रोताओं, यदि हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस कांड।

श्री राम के हाथों जब पल भर में शिव जी का धनुष टूट गया तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्गलोक में सुयश फैल गया कि श्री राम ने शिव का धनुष भंग करके सीता का वरण कर लिया है। देवलोक भी नृत्य गीत के स्वर से झंकृत होने लगे। सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता से ऐसा करते नहीं बनता। उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का स्मरण हो आया और वो मानो भयभीत हो गई। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री राम मन ही मन मुस्काने लगे, किंतु उपस्थित राजाओं में से अनेक ईर्ष्या द्वेष से जल उठे। किसी ने कहा कि दोनों कुमारों को बांधकर सीता को छीन लो, हमारे जीते जी सीता को अन्य कैसे ब्याह सकता है। किंतु वास्तविकता तो ये थी कि वे गाल बजा रहे थे। उनका बल, प्रताप, वीरता, तेज सभी तो धनुष भंग होते ही लुप्त हो गए थे। उनकी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो उनके चेहरों पर कालिक पुत गई। राजाओं के दुर्वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय धनुष भंग का निनाद सुनकर क्रोधी परशुराम वहां आ पहुंचे।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस का। ये रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर है। लीजिए आप सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप वंदना कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। अब से थोड़ी देर में सुनिए आकाशवाणी जयपुर से प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी में और उसके पश्चात राजस्थानी में।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए समान दृष्टिकोण पर आधारित बताया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां आयोजित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्य में चल रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा है। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज, पूर्वी और उत्तरी जिलों के साथ कई स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां।

0: समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति और भविष्य को आकार दे रही हैं। प्रधानमंत्री ने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के बाहर इस विशेष पहल की मेजबानी को फ्रांस के लिए सम्मान का विषय बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को न केवल अपार प्रतिभाओं से संपन्न देश के रूप में देख रही है, बल्कि नवाचार के देश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में भी देख रही है। राष्ट्रपति मैक्रों ने स्वतंत्रता के बाद से भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर भी श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी।

0: दोनों नेताओं के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता जारी है। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इन दिनों राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां और प्रचार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 12 साल के विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर आयोजित प्रदर्शनी में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सिरोही जिला मुख्यालय पर चल रही प्रदर्शनी का आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने अवलोकन किया। इस दौरान स्थानीय सांसद लुम्बाराम चौधरी भी मौजूद रहे। अलवर जिला मुख्यालय पर लगाई गई प्रदर्शनी का प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अवलोकन किया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा।
1: देखो, जो मिलावट, गड़बड़, घोटाला रीड पेपर में, सब इंस्पेक्टर में, आरएस में प्लस बीज में अगर संपूर्ण संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो मैं बड़ा कदम उठाऊंगा। आरएस पेपर के बड़े आरोपी बचे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करूंगा। रीड पेपर के मगरमच्छ बचे हुए हैं, उनकी भी करूंगा। कोई व्यक्ति माना बचा है और कोई बचता है तो उसमें भी पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए।
0: विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के तहत आज बीकानेर में भाजपा की ओर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन रखा गया। सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में भारत ने विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय और जन कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम किया है।
2: नल से जल की बात करो, हर घर बिजली की बात करो, बिजली पहुंचने की बात हो और चाहे देश की रक्षा सुरक्षा की बात, इसी कालखंड में देश ने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, एयर स्ट्राइक देखा, ऑपरेशन सिंदूर भी देखा और इसी कालखंड में धारा 370 समाप्त हुए भी देश ने देखा और जम्मू कश्मीर भी मुख्य धारा में जुड़ा, भारत का संविधान भी जम्मू कश्मीर में लागू।
0: आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में आयोजित किए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविरों में संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों को तहसीलदारों तथा नायाब तहसीलदारों की पोस्टिंग का अधिकार दिया है। 12 जून से शुरू हुए इन शिविरों के प्रभावी और सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्व विभाग ने प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है। जनता से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करने और योजनाओं के लाभ को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। अब संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर अपने क्षेत्राधिकार में नॉन फील्ड में कार्यरत तहसीलदारों तथा नायाब तहसीलदारों को तहसीलों या उप तहसीलों के खाली पदों पर पदस्थापित कर सकेंगे। इसके अलावा भू राजस्व अधिनियम के तहत आबादी विस्तार के लिए भूमि आरक्षित किए जाने की जिला कलेक्टर की शक्तियां भी शिविर प्रभारियों को दी गई हैं। खातेदारों की भूमि से संबंधित मामले और अभिलेखों में गलतियों को ठीक करने के प्रकरण से संबंधित शक्तियां भी प्रभारियों को सौंपी गई हैं। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को भी भूमि बंटवारे और पंचायतों के सीमा ज्ञान की शक्तियां हस्तांतरित की गई हैं। सरकार ने भूमि आवंटन के लिए आवेदन की उद्घोषणा की समय अवधि भी घटाकर 7 दिन कर दी है। राज्य में नमक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। नए नियमों के अनुसार अब नमक उद्योग के लिए भूखंड आवंटन

ई ऑप्शन के माध्यम से किया जाएगा। पहले ये प्रक्रिया लॉटरी आधारित थी। जिन जिलों में नमक उत्पादन के लिए लवणीय भूमि उपलब्ध है, उनमें अब सर्वे, सीमांकन और भूखंडों के मापन के बाद ही आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। पूर्व के नियमों में लीज समाप्त होने के 4 साल बाद नवीनीकरण करने का कोई प्रावधान नहीं होने से राज्य की लगभग 300 नमक उत्पादक इकाइयां लीज नवीनीकरण से वंचित थी, जिसके कारण नमक उत्पादक काफी परेशान थे। राज्य सरकार द्वारा ऐसी इकाइयों को 6 महीने की एक मुश्त छूट प्रदान कर नमक उत्पादकों को राहत दी गई है। सरकार के इस फैसले से नमक क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। पाली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए डे केयर सेंटर का आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने उद्घाटन किया। इस सेंटर में बुजुर्गों को उनके समय के सदुपयोग के लिए विभिन्न गतिविधियों के जरिए व्यस्त रखा जाएगा। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित है।

0: सलुम्बर में किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर जागरूक करने के लिए कार्यशाला रखी गई। जावर माइंस के सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यशाला में सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत और विधायक शांति देवी ने भाग लिया। इस अवसर पर किसानों को रासायनिक उर्वरकों के बिना खेती करने और नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। और अब मौसम। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भाग में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। राज्य के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों के साथ ही शेखावटी क्षेत्र के जिलों में आज कई स्थानों पर आंधी बारिश का दौर बना रहा। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद मौसम ने पलटा खाया और कई जगह बारिश हुई। बारिश के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जैसलमेर को छोड़कर शेष सभी जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। इधर मौसम के सुहावना बने रहने से गर्मियों की छुट्टियों में प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर रौनक देखी जा रही है। राजधानी जयपुर में पिछले कुछ दिनों से घरेलू पर्यटकों की बड़ी संख्या में आवक दर्ज की गई है। पर्वतीय पर्यटक स्थल आबूराज में इन दिनों राजस्थान के साथ ही पड़ोसी राज्य गुजरात से भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: माउंट आबू में इन दिनों पर्यटकों की अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक परिवार सहित माउंट आबू पहुंच रहे हैं और यहां के सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में यहां का मौसम काफी राहत भरा बना हुआ है। रविवार को आसमान में बादल छाए रहने से मौसम और भी खुशनुमा हो गया, जिससे पर्यटकों ने विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घूमने के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लिया। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का यह मैच बर्मिंगम के एजबेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए समान दृष्टिकोण पर आधारित बताया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां आयोजित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्य में चल रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा है। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज, पूर्वी और उत्तरी जिलों के साथ कई स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से टोंक जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। राजस्थान के लखनऊ के नाम से मशहूर टोंक जिला नवाबों की विरासत और संस्कृति के लिए जाना जाता है। राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित ये जिला राजधानी जयपुर से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और एक प्रमुख ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ पर स्थित बीसलपुर बांध राज्य में पेयजल का एक बड़ा स्रोत है। टोंक जिले की चिट्ठी में आज हम बात करेंगे पिछले महीने टोंक में हुई विभिन्न गतिविधियों के बारे में। ऊर्जा और टोंक जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान श्री नागर ने देवली में दिव्यांगों को स्कूटी की सौगात दी। स्कूटी मिलने पर दिव्यांग जन के चेहरे पर खुशी नजर आई। कार्यक्रम में कुल 59 स्कूटियों का वितरण किया गया। अपने संबोधन में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि स्कूटी मिलने से दिव्यांग जन का जीवन सुगम होगा, उन्हें रोजमर्रा के कामों में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। हाल ही में ग्राम विकास रथों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को लेकर आम जन को जागरूक करने का कार्य किया गया ताकि एक भी पात्र व्यक्ति अपने हक से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने मालपुरा के नगर वन में जिला स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर गंगा दशहरा से शुरू हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संपन्न हुआ। इसका समापन समारोह आयोजित किया गया। जलदाय मंत्री ने नगर वन में पौधरोपण कर अधिकाधिक पेड़ लगाने और विकसित होने तक उनकी देखभाल करने का आह्वान किया और कपड़े के थैले वितरित कर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का संदेश भी दिया। इसी दिन से हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। श्री चौधरी ने पेड़ों पर परिंदे भी बांधे ताकि पक्षियों को गर्मी में पानी मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रकृति हमें जल, मिट्टी, शुद्ध हवा, भोजन उपलब्ध कराती है, इसलिए ये हम सबका दायित्व है कि हम प्रकृति को संरक्षित रखें। श्री चौधरी ने बीते दिनों मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के चैनपुरा गाँव में ग्राम रथ अभियान के तहत रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से संवाद किया। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं और सुझाव उनके सामने रखे। श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और ग्राम रथ अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भीषण गर्मी के मद्देनजर पीएचईडी मंत्री ने जनसुनवाई के दौरान जलदाय विभाग के अधिकारियों को जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाए रखने पर जोर देने को कहा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर टीना डाबी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका सहित अन्य आला अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जिले में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का काम सुचारू रूप से चल रहा है, इसके लिए प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला कलेक्टर ने लोगों से सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय महत्व के काम में सहयोग करने की अपील की है। इससे पहले स्वगणना का दौर चला, लोगों ने स्वगणना पोर्टल पर खुद अपनी जानकारी भरी। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की जिले भर में तैयारियां की जा रही हैं। जगह जगह योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इसके तहत विद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, सरकारी संस्थानों में योग अभ्यास का सिलसिला चल रहा है। इन कार्यक्रमों में नियमित योग अभ्यास कराकर फिट रहने का संदेश दिया जा रहा है। अधिक मास के चलते इन दिनों जिले भर में धार्मिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। जिले के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान करते नजर आ रहे हैं। वहीं ईद उल अजहा का पर्व भी परंपरागत रूप से मनाया गया। ईदगाह और मस्जिदों में लोगों ने सामूहिक रूप से नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। इस अवसर पर कुर्बानी की रस्म अदा कर दावतों के दौर भी चले। टोंक जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस साझेदारी ने आपसी विश्वास साझा मूल्य और भविष्य खातर समान दृष्टिकोण मत है आधारित बतायो। केंद्र ने नरेंद्र मोदी सरकार 12

0: वर्ष पूरा हो बारे मौके राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां रखी गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सरकारी उपलब्धियां गिनाई। राज्य में चल रिया शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर माए लोगारी समस्यावारों मौका माथे समाधान वैरियो है। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज, पूर्वी और उत्तरी जिला रेसा के कई ठोड़ा माथे आंधी और बारिश। समाचार अरे सागे, मैं रचना पारिक और अब है समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो आज नीन्स में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम रो भेला तौरु उद्घाटन करियो। भारत फ्रांस नवाचार बरस में राख्या इन कार्यक्रम में दूजा देशाना शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी भेला विया। इन मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और फ्रांस का मजबूत संबंधारो जिक्र करियो। वणा कया के नवाचार प्रौद्योगिकी और भारत रा नौजवानारी आकांक्षावा देश रा विकास ने गति और भविष्य ने आकार दे रही है।
1: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
0: फ्रांस रा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो भारत रे बारे इन विशेष पहल की मेजबानी ने फ्रांस खातर सम्मान रो विषय बतायो। वणा कया के दुनिया भारत ने अपार प्रतिभावां को संपन्न नवाचार और प्रौद्योगिकी रा हल्का माए एक क्रांतिकारी शक्ति रा रूप माए देख रही है। राष्ट्रपति मैक्रो आजादी रे पछे भारत रा सबू लंबा टेम तय निर्वाचित प्रधानमंत्री बनवा माथे भी श्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच शिष्टमंडल स्तरीय वार्ता जारी है। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ावा माथे चर्चा चल रही है, जिनमें रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार भेड़ो है। केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार 12 बरस पूरा हो बारे मौके आदिना राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां और प्रचार गतिविधियां चल रही है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय माथे राखी प्रदर्शनी माए सरकारी उपलब्धियां और जन कल्याणकारी योजनाओं प्रचार प्रसार करियो जा रही है। सिरोही जिला मुख्यालय माथे चाल रही प्रदर्शनी रो आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ओटाराम देवासी जायजो लीनो। इन दौरान स्थानीय सांसद लुम्बाराम चौधरी भी मौजूद रिया। अलवर जिला मुख्यालय माथे लगाई थी प्रदर्शनी रो प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जायजो लीनो। इन मौके प्रभारी मंत्री कया के राज्य सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति रे चालता किणी दोषी ने बख्शो नी जावेला। खबर नवी सौ बातचीत में वणा कयो के कास्तकारा ने नकली खाद बीज बेच पावाला माथे कड़ी कार्यवाही जारी रहेला।
2: देखो जो मिलावट गड़बड़ घोटाला रीड पेपर में सब इंस्पेक्टर में आर एस में प्लस बीज में अगर संपूर्ण संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो मैं बड़ा कदम उठाऊंगा। आर एस पेपर के बड़े आरोपी बचे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करूंगा। रीड पेपर के मगरमच्छ बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी। कोई व्यक्ति माना बचा है और कोई बचता है तो उसमें पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए।
0: इन कड़ी माए विकसित भारत संकल्प सम्मेलन रे तहत आज बीकानेर माए भाजपा री कानून प्रबुद्ध जन सम्मेलन राख्यो गयो। सम्मेलन माए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए लाडला 12 बरस माए भारत विकास सुशासन राष्ट्रीय सुरक्षा सामाजिक न्याय और जन कल्याण हल्का माए घनी तरक्की करी है। वे कया के मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास राम मंत्री रे सागे काम करियो है।
3: नल से जल की बात करो, हर घर बिजली की बात करो, बिजली पहुंचने की बात हो और चाहे देश की रक्षा सुरक्षा की बात। इसी कालखंड में देश ने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, एयर स्ट्राइक देखा, ऑपरेशन सिंदूर भी देखा और इसी कालखंड में धारा 370 समाप्त हुए भी देश ने देखा और जम्मू कश्मीर भी मुख्य धारा में जुड़ा, भारत का संविधान भी जम्मू कश्मीर में लागू।
0: आयुष मंत्रालय आज यूट्यूब माथेराचा एक लाइव योग सत्र रे मार्फत नयो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनायो। इन ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000

0: तो बत्ता लोग भाग लेना। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव का या उपलब्धि दुनिया भर में योग री बढ़ती लोकप्रियता ने दर्शावे है। बना लोगों योग ने आपरा रोजमर्रा रा जीवन रो हिस्सो बनावारी अरज करी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रो खास कार्यक्रम 21 जून ने कोलकाता में वेला। ये समाचार आप आकाशवाणी राज जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। राज्य सरकार प्रदेश में रखा जा रहा ग्रामीण सेवा शिविरा में संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार आरी पोस्टिंग रो अधिकार दियो है। 12 जून से शुरू हुआ इन शिविरा ने असरदार और चौकी तरीका करवा खातर राजस्व महकमो प्रशासनिक शक्तियां बांट दिनो है। जनता से जुड़िया कामा ने टेम माथे पूरो करवा और योजनावारो फायदो हरेक जना ताई पुगावा खातर सरकार यो कदम उठायो है। अब संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर आपरा अधिकार क्षेत्र माए नॉन फील्ड माए काम कर रिया तहसीलदार और नायब तहसीलदारा ने तहसीला या उप तहसीला माए खाली पद माथे नियुक्ति कर सकेला। इनरे इतर भू राजस्व अधिनियम रे तहत आबादी विस्तार खातर जमी आरक्षित करिया जाबारी जिला कलेक्टर आरी शक्तियां भी शिविर प्रभारिया ने दी गई है। खातेदार आरा जमीन से जुड़िया मामला और अभिलेखा माए गलतियां ने ठीक करवारा प्रकरण से जुड़ी शक्तियां भी प्रभारिया ने सौंपी गई है। तहसीलदार और नायब तहसीलदारा ने भी भूमि बंटवारा और पंचायत आरा सीमा ज्ञान की शक्तियां भी हस्तांतरित करी गई है। सरकार भूमि आवंटन खातर आवेदन री उद्घोषणा री मियाद भी घटार 7 दिन कर दी है। राज्य माए नमक उत्पादन ने बढ़ावो देबा खातर नियमा माए फेर बदल करियो गयो है। नया नियमारे मुजब अब नमक उद्योग खातर भूखंड आवेदन ई ऑक्शन रे मार्फत करिया जावेला। पहली आ प्रक्रिया लॉटरी आधारित ही जिंचला माए नमक उत्पादन खातर लवणीय भूमि मुहैया है। उनमाए अब सर्वे सीमांकन और भूखंडारा मापन रे फचे ही आवंटन री कार्यवाही करी जावेला। पहली रा नियमा माए लीज खत्म हो बारे 4 बरस रे पचे नवीनीकरण करवारो कोई प्रावधान नी हो बासो राज्य की करीब 300 नमक उत्पादक इकाइयां लीज नवीनीकरण नी हो जिन वजह सो नमक उत्पादन घना परेशान हा। राज्य सरकार कानियो इन भातरी इकाइयां ने 6 महीना री एक मुश्त छूट देर नमक उत्पादक ने राहत दी गई है। सरकार इन फैसलाओं नमक हल्का माए निवेश बढ़ेला और रोजगार रा नया मौका वेला। पाली माए वरिष्ठ नागरिका खातर बनाया गया डे केयर सेंटर आरो आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत उद्घाटन किया। इन सेंटर माए बुजुर्गों खातर कई गतिविधियां चलाई जा रही है। इन मौके श्री गहलोत किया कि राज्य सरकार ठावा नागरिका रा कल्याण खातर समर्पित है। सलुम्बर माए कास्कारा ने जैविक और प्राकृतिक खेती री कानियो जागरूक करबा खातर कार्यशाला राखी गई। जावर माए साथ सामुदायिक भवन माए राखी जी इन कार्यशाला माए सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत और विधायक शांति देवी भाग लेना। इन मौके कास्कारा ने रासायनिक खाद रे बिना खेती और नवाचार करवाने प्रेरित करियो गयो। प्रदेश माए प्री मानसून रो सिलसिलो तेज बह रियो है। पश्चिमी विक्षोभ रा असर लारला 24 घंटा माए राज्य पूर्वी और पश्चिमी हल्का माए कुछ थोड़ा माते बादल गरज बारे साके कटे कटे छितरायो में बरसियो। राज्य पूर्वी और उत्तरी हल्का रे सा गई शेखावाटी केटारा जिला माए कई थोड़ा माते आंधी बारिश रो दौर चाल रियो है। राजधानी जयपुर माए दोपहर पछे मौसम पलट बसो कई थोड़ा माते हल्को में बरस बसो दिन और रात रात तापमान माए गिरावट आई है। मौसम महकमो आज प्रदेश और 9 जिला खातर ऑरेंज अलर्ट जारी करियो है। पटीने जैसलमेर अलावा सगड़ा जिला में येलो अलर्ट ऐलान करियो गयो है। अठीने मौसम सुहावनो वेवासु गर्मिया री छुट्टियां रे चालता प्रदेश री सैर सपाटा री थोड़ा माथे रौनक देखी जा रही है। राजधानी जयपुर में लाला कुछ एक दिनों घरेली सैलानिया री तादाद बढ़ी है। पर्वतीय पर्यटन थौड़ आबूराज माए आदिना राजस्थान रे सागे ही पड़ोसी राज्य गुजरात भी बड़ी संख्या में सैलानी पुगरिया है। बत्ती जानकारी महाकाल सिरोही खबर नबी सो।
1: माउंट आबू में इन दिनों पर्यटकों की अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक परिवार सहित माउंट आबू पहुंच रहे हैं और यहां के सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में यहां का मौसम काफी राहत भरा बना हुआ है। रविवार को आसमान में बादल छाए रहने से मौसम और भी खुशनुमा हो गया, जिससे पर्यटकों ने विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घूमने के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लिया। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत आपरा पहला मैच में पाकिस्तान रे सागे खेलेला। ग्रुप ए रो बकिंगम में एज वेस्टर्न माई भारतीय टीमरे मुजब सिंजा 7 बजे शुरू वेला। महिला टीम 20 अंतरराष्ट्रीय मैचा माए भारत हाल ताई पाकिस्तान ने 16 मई सू 13 मुकाबला माए हरा चुकी है। विश्व रक्तदाता दिवस माते आज प्रदेश भर में एक एक विधि राखी गई। सुरक्षित रक्तदान रा महत्व बारा माए जागरूकता लियाबा और स्वैच्छिक रक्तदान खातर प्रेरित कर 12 अगस्त न्यारा न्यारा संगठन और संस्थाना री कानियो कार्यक्रम रखा गया। अजमेरा जवाहरलाल नेहरू सफाखाना में सम्मान समारोह रखो गयो। रक्तदाता जीवनदान विषय माथे वक्ता आपरा विचार रखा। भीलवाड़ा में रेड क्रॉस सोसाइटी री कानियो रखा कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु रक्तदाता वारो सम्मान करियो। और अब है आखिर माए खास खबर एक कर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस साझेदारी ने आपसी विश्वास साझा मूल्य और भविष्य खातर समान दृष्टिकोण माथे आधारित बतायो। केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार 12 बरस पूरा होबारे मौके राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां रखी गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सरकारी उपलब्धियां गिनाई। राज्य में चल रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर में लोगों की समस्याओं मौका माथे समाधान दे रियो है। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज। पूर्वी और उत्तरी जिला रे सागे कई थोड़ा मात है आंधी और बारिश। इन सागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन अठे पूरो भी मां को आग लो। समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।

आकाशवाणी जैसलमेर के हम गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

राम जगत कार्यक्रम सुनने वाला सैंग ग्रामीण भाइयों ने कैलाश भैरव का नाला राम राम। भाइयों अपने जैसलमेर में जो है मानसून हमेशा पासत आया करे और मानसून आउन तक जो है गर्मी रो प्रकोप कह दो या गर्मी तेज पड़े और अपनी सहन शक्ति भी है और आप सहन करने सिवाय कुछ आरो को नहीं, फिर भी ये गर्मी में आपन जो है विशेष तौर से जो है अपने बड़े बुजुर्गों रो और छोटे बच्चों रो और पशुधन में ध्यान रखना है। पशुधन वास्ते आप छाया की व्यवस्था करो और समय समय मथे वहाँ वास्ते पानी रखता रहो जो कि गर्म नहीं हुए और खुद रो भी आप गर्मी रे में बचाव करो जहाँ तक संभव है, तेज धूप रे में आप नहीं निकला और अगर जरूरी निकलना हुआ तो आप सिर न ढकन निकला और उसके अलावा पेय पदार्थों जिके में भी स्वच्छ और शुद्ध वो पेय पदार्थ है ये तरीके की बात तो आप विशेष ध्यान रखो। ज़्यादा और के कोई भी पेय पदार्थ है अगर आप नहीं उपयोग में लो तो पानी है और आप खुद रो घर से साफ पानी ले निकलो और आगे भी कह चुको है अपना स्वच्छ और साफ पानी मिले तो वो आप सेवन यथासंभव थोड़ा ज़्यादा मात्रा में करो यही अपन गर्मी से बचा सके। उरे ये तो हो गई आप सामूहिक बातचीत और किसान भाइयों रे भले रे वास्ते और विशेष तौर से जो महिलाओं ने सशक्तिकरण जो एक उद्देश्य ले और अपने भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी नमो ड्रोन दीदी

योजना एक नाम से योजना लागू करोड़ी है। भारत सरकार एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं ने ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित कर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाओ और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक में बढ़ाओ देवों ये उद्देश्य है। ये तहत जो कोई महिला स्वयं सहायता समूह जो को होया करेगी गठन किया जाए उन्होंने कृषि कार्य वास्ते भारत सरकार ड्रोन उपलब्ध करावे और ये रोज को पहला उद्देश्य सीधो है कि महिलाओं जो को सशक्त बनाऊंगा और ये ड्रोन जो को काम है वो है कि नैनो यूरिया उर्वरक और कीटनाशी छिड़काव ना आसान और किफायती बनाऊंगा और ये सब जो को है किसान भाइयों और कौम सुगम और सरल हुई हमारा खेती संबंधी जो कोई समस्याएं निपटी और जो कुछ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो ये सो एक अतिरिक्त आय प्राप्त कर सके वो किसान भाइयों ने जो को है सहायता करे हमारी खेती कौम रहा और उगरे बदले में जो कोई वाजिब शुल्क है वो लिया करे और ये योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह है उन्होंने ड्रोन की कुल कीमत 80% या अधिकतम 8 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता रूप में दिया जाए और उग्र बाद में ये महिलाओं ने जो को है मुफ्त रूप से मुफ्त में 15 दिनों और विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाए ताकि उन्हें ड्रोन उड़ान और उग्र डेटा विश्लेषण जो तरीका है उन बारे में वो आपकी पकड़ बना सके और जब ये प्रशिक्षण पूरा कर ले तो उन्होंने जो को है ड्रोन रिमोट पायलट और सर्टिफिकेट भी दिया जाए। ये मैं जो को है संचालन और रख रखाव भी उन्होंने प्रशिक्षण बढ़ोवे ताकि उन्होंने जो को है सही तरीके से उन्होंने रख सके और वे जो को है लगातार कार्य कर और आप भी जो को है आमदनी में बढ़ा सके और ये में जो पात्रता रही आप बात कर बार बार कहे कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं जो को ये पात्र हो सके और ये तहत जो को 10 से 15 गाँव रे समूह रही महिलाओं ने क्लस्टर रूप में एक साथ प्रशिक्षण दिया जाए और ये वास्ते आप और ज़्यादा जानकारी लेने वास्ते नमो ड्रोन दीदी पोर्टल में विजिट कर सको और सबसे मोटी बात है जैसे ये रे माध्यम से जो है मुख्य उद्देश्य है अपारा जो ग्रामीण भाई है किसान भाई है वो खेती रे मोए जो कम लागत रे मोए और एक आप कह सको कि सूक्ष्म बारीक तरीके से यूरिया नैनो यूरिया उर्वरक और कीटनाशी रसायन है और छिड़काव हो सके ताकि वो जो को है फसल नो संपूर्ण लाभ मिल सके और वेरी लागत जो को कम से कम आवे या आप ये भी कह सकें कि वो जो को है अपन खेती या जो को छिजत जो को कम से कम जाओ तो ये भी ये रो मुख्य उद्देश्य और ये साथ साथ में जो को महिला समूह ना आगे लाओ और ड्रोन दीदी रूप में विकसित करना ताकि उम्र वो भी आत्मनिर्भर हो सके। तो आप जानकारी ली और आप कार्यक्रम जो आप मुख्य हिस्सों आप लोक संस्कृति लोक संगीत तो आज आप अमर भूंगर कुंवर आवाज़ में एक बढ़िया लोकगीत सुना जिसका बोल है बींजा सेना।

Sen alır, sen alır o, sen alır o, bize ne?

আজিরে সাথে সরে গরি এদের সাথে সরে সেনালো সেনালো রে

Ek sandesh ore shenadiro, shenadiro, re.

तो आप अमर घूंगर खोर आवाज में बढ़िया लोकगीत सुनियो, जो तेरा बोल तो भींजा सेना। और आज 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस है, रक्तदान दिवस भी है। ये दिन जो है हर साल रक्तदान दिवस जो को मनाया जावे, ये मुख्य उद्देश्य है सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ावनो और स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदाताओं और जो जीवन रक्षक योगदान है उन वास्ते उन्होंने धन्यवाद देवनो, या एक प्रकार से जो है उन्हारी जो योगदान है वो ना ये दिन याद करनो उन्होंने ये और जो लोग नहीं कर रहे हैं उन्होंने प्रेरित करनो और रक्तदान की मात्रा नो या रक्तदाताओं की संख्या न बढ़ावनो और रक्त की उपलब्धता भी बढ़ावनो मुख्य रूप से उद्देश्य है, ताकि कदे भी जो है आप तो कह सकें कि आपातकालीन स्थिति रक्त की कमी से करी जिंदगी नहीं जावे, जिंदगी

ईयर वास्ते रक्तदान मेरे महत्व न रक्तदान जो है कि तो आवश्यक है। ये चीज़ों ने लोगों के बीच में निश्चित रूप से जागरूकता फैलावनी और जो रक्तदान पहले से कर रहा है उन्होंने वॉरियर भी आप कह सको वो नियमित रूप से जो है वो ये चीज़ ना समझिए और लगातार आप इशारा दे रहे तो हमारे योगदान ना आप कह सकें कि भाई एक महत्व देना उन्होंने बढ़ाव देना हमारी प्रशंसा करनी या हमारे मनोबल ना बढ़ावन भी आप एक उपयुक्त शब्द हो सके। ये दिन माध्यम से दिन बनावन जो उद्देश्य वो मैं मुख्य रूप से शामिल है। अगर आप इतिहास की बात करो तो ये महत्वपूर्ण दिवस की शुरुआत है। तो पहली बार वर्ष 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा की गई थी और जो कार्ल लैंडस्टाइनर जो है उनकी यह जयंती है। नोबल पुरस्कार विजेता है यहाँ जो को ब्लड ग्रुप AB और O प्रणाली की खोज की थी और जहाँ आप पहले बात की है आपातकालीन स्थितियों गंभीर बीमारियों सर्जरी और प्रसव के दौरान रक्त निरंतर आवश्यकता होया करे और यह केवल जो को इंसानों द्वारा दोन देवन से ये पूर्ति हो सके ये कोई विकल्प को नहीं क्योंकि न तो दवाया से कमी पूरी हो सके न ये जो कोई उत्पादन किया जा सके। सिर्फ और सिर्फ एक इस तरीको है कि रक्तदान किया जाए। आमतौर में 18 से 65 वर्ष तक जो स्वस्थ व्यस्क है वो रक्तदान कर सके और नियमित रूप से भी अगर रक्तदान करना चाहो तो प्रत्येक 3 माह अंतराल में मतलब वो रक्तदान कर सके और वो जो को आप कह सकें कि भाई कुछ न्यूनतम उम्र में चीज़ों वह जो है वजह से रुकावट नहीं आवा तो और वजन है जो 50 किलोग्राम होना चाहिए और जो जो लोग कोई भी सक्रिय बीमारी जहाँ जुकाम वायरल या बुखार से पीड़ित हुए उन्होंने रक्तदान नहीं करना चाहिए। और ये अलावा जो है जब आप अस्पताल में जाओ तो आप रक्त संबंधित जो आवश्यक जाँच हो पहले कर लिया करें और वे साथ साथ में जो है आप ग्रुप भी है क्योंकि रक्त मोह मतलब कई प्रकार का ग्रुप होया करे सिर्फ एक वो ग्रुप पहले है जो को कहना भी चढ़ सके वो टोटल को प्रतिशत की बात करें तो 6% है बाकी सब अलग अलग ग्रुप है तो उसके अनुसार आप उन्होंने खुद रक्त ग्रुप ही ध्यान भी हुआ तो ज़्यादा बढ़िया बात है। और रक्तदान जो को है कोई भी प्रकार की कमजोरी को लाभ है भ्रांतियों है निश्चित रूप से जो को है शरीर से एक बार में एक यूनिट रक्त निकाले जाए अपने शरीर में अमूमन जो है 10 यूनिट से ज़्यादा आसपास एक स्वस्थ व्यक्ति रहे शरीर में रक्त होया करे। और अगर रक्तदान के बाद में लगातार कम चक्कर आता रहे तो उन्होंने आप ही जाँच अवश्य कराना चाहिए और उन्होंने उसमें पहले दोबारा रक्तदान नहीं करना चाहिए। सामान्यतः एक बार रक्तदान करने 5 मिनट के बाद में व्यक्ति जो को उठ सके ठीक है और तुरंत बाद में उन्हें तेज धूप या भारी कोई शारीरिक श्रम से बचना चाहिए और अलावा कोई प्रकार की सावधानी की आवश्यकता को नहीं। और रक्तदान एक प्रकार से जीवन दान है आपों के नाम नयो जीवन तो कौन दे सको लेकिन आपों मरते हुए तीनों रक्तदान के माध्यम से जीवन दान इतना बढ़िया है पूरा जीवन बचा सकें और आप तो महर्षि दधीची की परंपरा है आप देह त्याग कर शरीर त्याग कर और आपकी हड्डियाँ वज्र रास्ते दी थी तो रक्तदान तो अपनों सबनों आज है प्रण लो कि भाई कर्म आवश्यक रूप से करना चाहिए। और एक जाते जाते लोकगीत और सुनो जेकर बोल है हिचकी और ये ना गाय मुल्तान का पार्टी।

I'm

ali jot tare mera niyam.

अभी ग्रामीण भाई ग्राम जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए राजस्थानी लोक संगीत।

0: अभी आप राजस्थानी लोक संगीत सुन रहे थे, ये रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर है। जी, आप सुनिए आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम विकास यात्रा। कार्यक्रम का निर्देशन किया है श्री रामजी लाल मीणा ने और वाचन स्वर हैं शरद शर्मा के।
1: आजादी का अमृत महोत्सव।

कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जाती हैं कि जिससे देश के विकास में आम नागरिकों का योगदान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहे। हम जानते हैं कि आज के समय में लोगों को बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं, कई बार रिसोर्स नहीं होते हैं, कई बार होते हैं, लेकिन मार्गदर्शन कई बार मिल पाता है, कई बार नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती है। विकास यात्रा कार्यक्रम में हम नित नई योजनाओं की जानकारी लेकर आते हैं, जिसके माध्यम से आपको ये पता चल सकता है कि हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है और सरकार की मंशा देश के विकास में आम नागरिकों की भागीदारी को लेकर वो कितनी सजग है और कितनी जागरूक होकर लोगों को उनसे जोड़ रही है। न केवल उससे देश का विकास होगा, वरन उनका खुद का भी विकास होगा और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में उन सभी लोगों का योगदान महत्वपूर्ण साबित होगा। आज की विकास यात्रा में मैं हूं शरद शर्मा और हम बात कर रहे हैं एक ऐसी योजना की जो हाल ही में लॉन्च की गई है। उस योजना का नाम है भव्य। माननीय केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया है। आइए जानते हैं कि भव्य योजना क्या है। भव्य का पूरा अगर हम मतलब समझे तो इसका मतलब होता है भारत औद्योगिक विकास योजना। इस योजना को लॉन्च करने के साथ ही इस योजना के दिशा निर्देश भी लॉन्च कर दिए गए हैं। यहां पर देखने वाली बात यह है कि समय समय पर देश में विकास के नए आयामों को स्थापित करने के लिए सरकार समय समय पर कई ऐसी योजनाओं की जो है लॉन्चिंग करती रहती है, जिससे आम आदमी जुड़कर उसका फायदा ले सके। बहरहाल मौसम बहुत गर्म है और बाहर धूल भरी आंधियां और हीट वेव का दौर चल रहा है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम अपने इस जीवन को थोड़ा सा और सरल और आसान बनाने के लिए उन चीज़ों पर गौर करें जिससे हमारा काम आसान हो, जीवन सरल हो और हम आगे बढ़ सकें। ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि योजना के मद में पैसा इतना आवंटित किया जाए कि जिससे उस योजना का लाभ आम आदमी तक पहुंच सके। तो हम जो राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क के जरिए मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट हब बनाएगी, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि योजनाएं जो बनती है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार द्वारा ही संचालित होती है, लेकिन कई बार योजनाओं का खाका इस तरह से भी तैयार किया जाता है कि जिसमें हम ये मानकर चलते हैं कि वह राज्य सरकारों के सहयोग से भी चले। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना में राज्य सरकार को भी जोड़ने का

काम किया है। केंद्रीय मंत्री ने जो इस केंद्रीय कैबिनेट की करीब जो 2 माह पहले इस योजना को जो मंजूरी मिली थी, उससे सरकार को उम्मीद है कि राज्य सरकारें औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराएगी। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि भव्य योजना का मुख्य उद्देश्य जो है उत्पादन और इन्वेस्टमेंट हब बनाना, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे काम हमारे उद्योगों पर निर्भर है, और उद्योगों को अगर आप विकसित और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम इस तरह की योजनाएं बनाएं कि जिससे देश के विकास में उनका योगदान आगे से आगे बढ़ता रहे, और इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हम उन लोगों को भी जोड़ सकते हैं जो बहुत सारा इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अक्सर देखने में आता है कि आज के युवा जो है 2-3 तरह के काम को बहुत करते हैं। एक अगर हम बात करें ट्रेड सेक्टर को लेकर कि जहां पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, दूसरा है इंजीनियरिंग का। तो ऐसे में हम इन 2 विषयों को लेकर युवाओं की कार्य क्षमता को अगर देखने का प्रयास करें तो इससे ये जाहिर होता है कि ये सेक्टर ऐसे हैं जहां पर तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी और मैन्युफैक्चरिंग जिसको कह सकते हैं उनका विकास होकर सामने आता है। अब युवाओं के लिए इस तरह की योजनाओं का बहुत महत्व होता है। उद्योगों के क्षेत्र में उनके ज्ञान और तकनीकी कह सकते हैं कि तकनीकी जो उनके अंदर नॉलेज है उसका भी फायदा इस प्रकार की योजनाओं में मिल सकता है। इस योजना में जो है अगले 4 महीनों में राज्य से आवेदन मांगे जाएंगे और पहले फेज में 20 पार्कों की अर्जी आएगी। तो आप ये सोचिए कि जो भव्य योजना है वो एक प्रकार से भारत औद्योगिक विकास योजना के माध्यम से एक प्रकार का औद्योगिक हब बनाया जाएगा जिसमें राज्यों को भी शामिल किया जाएगा, और राज्यों को शामिल करने के बाद उनके साथ मिलकर एक औद्योगिक पार्क विकसित होगा। अब इस औद्योगिक पार्क की जो हम भूमिका देखें तो वह बहुत विस्तृत और विशाल रूप में सामने आती है, क्योंकि इसका दायरा देश में बहुत लंबा और विस्तृत होगा। राज्य सरकारों के सहयोग से जब ये योजना आगे क्रियान्वित होगी तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से देश को आगे बढ़ाने में इन योजनाओं के माध्यम से वहाँ के स्थानीय लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो रहा है, राज्यों का विकास हो रहा है, राज्यों की आर्थिक प्रगति हो रही है, लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है। तो यह योजना इस तरह से आगे बढ़ेगी, और योजना की शुरुआत में जो पहले 2 महीने हैं उसमें 20 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाने का काम शुरू होगा, उसके लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद 2 अन्य महीने जो होंगे तो उसके लिए 30 पार्कों के आवेदन लिए जाएंगे, और बाकी बचे हुए 50 पार्कों को अगले फेज में शामिल किया जाएगा। तो हम मानकर चल सकते हैं कि इस भव्य योजना में कुल आने वाले महीनों में लगभग 100 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। अक्सर हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, जहां पर पार्क की बात आती है तो हरी भरी खुशहाली और प्रकृति के बीच लोगों की चहल पहल और कह सकते हैं कि टहलने की गतिविधियां दिखती है, लेकिन इंडस्ट्रियल पार्क जब बनते हैं तो वहां पर गतिविधियां दिखती है उद्योगों से जुड़े हुए उत्पादन की, उत्पादन से जुड़े हुए वितरण प्रणाली की, और देश के आर्थिक विकास में ऐसे लोगों के योगदान की जो अपने अथक परिश्रम से देश की औद्योगिक प्रगति में अपना योगदान देते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कॉन्सेप्ट सरकार का बहुत बढ़िया है, जिसमें सरकार चाहती है कि इस तरह के औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएं जिसमें आम आदमी को जोड़कर उद्योगों का विकास किया जाए। अब जिस तरह से हम देखते हैं कि पार्कों में तरह तरह के पौधे होते हैं, उनकी तरह तरह की खुशबू होती है, अब औद्योगिक पार्क की जो परिकल्पना है उसमें हम ये मान कर चल सकते हैं कि उसमें इस प्रकार के उद्योग लगाए जाएंगे जिससे उन लोगों को रोजगार मिलेगा जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना ज्ञान साथ में रखते हैं। अब जैसे किसी के पास मान लीजिए कपड़ा बनाने की तरकीब है, किसी के पास कुछ अन्य लोहे से संबंधित तकनीकी ज्ञान है, किसी के पास कुछ अन्य है, तो ऐसे एक जगह पर इस तरह से राज्यों के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल पार्क का जब हब बनेगा तो उसमें बहुत सारे उद्योगों को हम आपस में जोड़कर एक ही कनेक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं।
और यहाँ पर इससे एक फायदा ये भी होगा, तकनीकी हस्तांतरण। जब आप इंडस्ट्रियल पार्क की कल्पना करते हैं तो उसमें इतने सारे पार्कों की आपसी कनेक्टिविटी में बहुत सारी तकनीक का जो आदान प्रदान है वो इसके माध्यम से भी होता है, और अलग अलग जगहों के प्राकृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों में लगाए जाने वाले इन उद्योगों में हम अक्सर देखते हैं कि जो तकनीकी और सूचना का आदान प्रदान है वो बेहतर ढंग से हो सकता है। जैसे मान लीजिए राजस्थान में एक पार्क हमने बना दिया, इस औद्योगिक पार्क में मान लीजिए यहाँ के आधार पर किसी चीज का उत्पादन हो रहा है और उसकी संभावना किसी अन्य राज्य में भी है, तो यहाँ की तकनीक और यहाँ के ज्ञान का हस्तांतरण हम यहाँ से भी उस कनेक्टिविटी में उस इंडस्ट्रियल पार्क हब में कर सकते हैं और वहां से यहाँ पर भी हस्तांतरित हो सकता है। तो इस प्रकार की ये योजनाओं के माध्यम से सरकार जो है न केवल औद्योगिक विकास चाहती है वरन वह लोगों के बीच में उनको जोड़ने का काम भी करती है। इसके माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि तकनीकी और सूचना और अन्य स्तर पर व्यक्तियों के ज्ञान का जो स्टेज है वो कितना है और किस प्रकार का है। तो इस तरह से ये एक इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। इंडस्ट्रियल हब बनने से देश के विकास को गति मिलेगी। हम जब बात कर रहे हैं कि ये एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की जो योजना सरकार भव्य योजना के माध्यम से क्रियान्वित करने जा रही है, तो इस योजना का उद्देश्य पहले से स्वीकृत जमीन, तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेटेड सर्विसेज के साथ निवेश के लिए तैयार इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाना है। इससे क्या होगा, उद्योगों को अपना कामकाज जल्दी शुरू करने में मदद मिलेगी और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसका विकास होगा। आप जानते हैं कि जिस तरह से हाल ही के कुछ वर्षों में रेलवे ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से डेवलप किया है कि उसमें नेशनल कॉरिडोर बनाकर परिवहन की सिस्टम को अलग से जगह दी गई है, जिसमें रेलों का संचालन इस प्रकार से हो रहा है कि जहां पर यात्री गाड़ियों के संचालन में भी कोई दिक्कत नहीं होती, वहीं दूसरी जगह माल भाड़े को वो मतलब माल लाने ले जाने के काम को भी हम ये देख रहे हैं कि उसमें भी कोई बाधा नहीं होता है। तो उनका कॉरिडोर अलग बन जाने से उनकी जो सुविधाएं हैं उससे आम आदमी और व्यापार दोनों ही बिना किसी प्रकार के प्रभावित हुए अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम कर रहे हैं। तो यह जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है यह भी उसी तरह का एक कॉरिडोर बनाएगा जिसमें बहुत सारे उद्योगों के लिए जगह होगी और वो अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग जगहों से चलते हुए आपस में कम्युनिकेट करते हुए एक दूसरे से जुड़ते हुए वे अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। और इस पार्क के विकास के साथ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्ट्रक्चर के तहत राज्यों और प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर के साथ मिलकर भी इसको किया जाएगा। तो इसमें भागीदारी की जहां तक बात आती है, सरकार अपने स्तर पर ही भागीदारी नहीं करेगी, वरन सरकार बाहर से निजी क्षेत्र को भी इसमें जोड़ने का काम करेगी, क्योंकि हर चीज के लिए एक अपनी लिमिटेशन और सीमा होती है। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इसमें सरकार सामूहिक रूप से लोगों को जोड़कर अपना काम कराना चाहती है और जिससे लोगों का जीवन स्तर आगे बढ़े और उनमें जो उद्योगों के प्रति जो भावना है और उनका जो इस बारे में ज्ञान है वो आगे बढ़कर आए। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इस बारे में हम बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या होगा, तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता भी देगी। अक्सर देखने में आता है कि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जब धन की आवश्यकता की बात होती है तो सरकार पहले से बहुत सारा बजट रखती है, और हमने आपको पहले भी बताया कि इसमें 33,660 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब जब आप इसको रोड मैप को जमीनी हकीकत पर लाना चाहेंगे तब आपको ये वित्तीय सहायता की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो सरकार इसके लिए भी काम कर रही है। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इन इंडस्ट्रियल पार्कों का आकार जो होगा वो 100 से 1,000 एकड़ भूमि के बीच में होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए सरकार प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता देगी। आप सोच सकते हैं कि इससे बहुत सारा जो डेवलपमेंट होगा और कार्य आगे बढ़ेगा, और इन सहायता के तहत जो होगा काम, आंतरिक सड़कें होंगी, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, ड्रेनेज सिस्टम, कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, वेयर हाउसिंग, टेस्टिंग लैब्स और श्रमिकों के आवास के लिए सुविधाएं विकसित की जाएगी। पहाड़ी राज्यों के लिए 25 एकड़ जमीन पर भी इंडस्ट्रियल पार्क को मंजूरी दी जा सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इन सहायताओं में अगर हम बात कर रहे हैं श्रमिकों की, तो कोई भी उद्योग
बिना श्रमिकों के और बिना तकनीकी कौशल ज्ञान वाले व्यक्तियों के बिना संभव नहीं है और वो चल भी नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों के लिए भी बहुत सारी सुविधाओं को वहां पर उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि पूरे उद्योगों का आधारभूत स्तंभ जो होता है वो हमारा श्रमिक वर्ग होता है। तो श्रमिकों की सुविधाओं के लिए सरकार कई प्रकार के वहां पर सुविधाओं को उपलब्ध कराएगी, विशेषकर उनके लिए आवास, क्योंकि जहां पर ये काम होगा सरकार चाहेगी कि जो वर्ग है वो वहीं पर रहकर अपना दैनिक कार्य करे और उनकी आने जाने की सुविधा हो और उनके रहने खाने पीने की सुविधा हो और उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा आवास की सुविधा उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब हमने बात करी इसमें पहाड़ी राज्यों की, पहाड़ी राज्यों के लिए 25 एकड़ की जमीन भी काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो भौगोलिक एरिया इस प्रकार का होता है कि जहाँ पर कोई भी काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने वहाँ पर थोड़ी सी जमीन में रियायत देते हुए वहाँ पर भी इस प्रकार के पार्कों की भूमिका को बनाने का प्रयास किया है, ताकि वहाँ पर भी समान रूप से अन्य जगहों की तरह वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल पार्क विकसित हो सके। केंद्र सरकार इसके लिए कनेक्टिविटी सुधारने के लिए और बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सपोर्ट देने के लिए काम कर रही है। इस योजना में केंद्र सरकार ने मौजूदा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट के 25% तक बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट का भी प्रस्ताव दिया है, ताकि जैसे मान लीजिए अगर आपने इंडस्ट्रियल पार्क बना दिया और उसमें कम से कम 10 से 15 उद्योग लग गए और उसका उत्पादन अगर आप वहां पर कर रहे हैं तो उसको अन्य राज्यों तक या उसको आगे की सप्लाई तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाना भी बहुत जरूरी होगा। और लॉजिस्टिक नेटवर्क अगर जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक हम अपने उत्पाद को अन्य जगहों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में सरकार ये चाहती है कि इस नेटवर्क को भी और कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाया जाए और इसके लिए 25% तक जो बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट का प्रस्ताव दिया है वो अपने आप में बहुत मायने रखता है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक चैलेंज बेस्ड प्रोसेस के जरिए किया जाएगा, जो निवेश के लिए तैयार और रिफॉर्म ओरिएंटेड प्रस्तावों पर केंद्रित होगा। अब जब इस योजना की शुरुआत हुई और इसके दिशा निर्देश शुरू हुए तो बहुत से राज्यों ने इसमें अपनी रुचि भी दिखाई है। जैसे हम नाम लेना चाहेंगे, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, हरियाणा जैसे राज्यों ने इस योजना में अपनी कह सकते हैं कि रुचि जगाई है। और केंद्रीय मंत्री जो इस योजना को संभाल रहे हैं उन्होंने बताया कि जो राज्य जमीन, पानी और बिजली जैसी बेहतर सुविधाएं देंगे वे निवेशकों को ज़्यादा आकर्षित कर सकते हैं। तो सरकार का फंडा सीधा सा है कि योजनाओं का प्लेटफॉर्म तैयार कराने के बाद आधारभूत ढांचा स्थापित करने के लिए राज्य सरकारें अगर थोड़ा सा सहयोग करती है तो उसमें इन प्रकार के इंडस्ट्रियल पार्क विकसित हो सकते हैं और उनके लिए सरकार पूरी तरह से मदद देने को तैयार है। और जिसमें भी हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई भी योजना किसी भी राज्य सरकार या अन्य जगह पर चलाई जाती है तो उसके लिए बहुत सारी जरूरतों में बुनियादी आवश्यकताओं को थोड़ा सा बेहतर देखना पड़ता है, और वो है बिजली, पानी और ज़मीन जैसी सुविधाएं, जहां पर निवेशक आराम से आकर अपना उद्योग स्थापित कर सके। क्योंकि सबसे पहली समस्या जमीन को लेकर होती है और जो राज्य सरकार के दायरे में आती है, तो राज्य सरकार अगर निवेशकों को अपने ओर आकर्षित करते हुए अपने राज्य के औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए उसे कम से कम अपने जमीन के जो भूभाग पर उसका जो अपना कह सकते हैं कि अधिकृत रूप से वो अधिकार रखे हुए हैं तो वो उसको उपलब्ध कराए और उस जगह पर उनके लिए बिजली, पानी जैसी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। तो सरकार द्वारा इस तरह की योजनाओं को तकनीकी और गैर तकनीकी मदद देकर अपने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए काफी कुछ काम कर सकती है। राज्यों के पास प्राइवेट

सारे काम आसानी से हों और वे लोगों तक जल्दी से जल्दी योजनाओं के माध्यम से अपनी पहुंच बना सके। जब ये सारी चीजें हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम मानकर चल सकते हैं कि वहां पर औद्योगिक पार्क को बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री जिन्होंने हाल ही में इन योजनाओं को लॉन्च किया है, वे मानते हैं कि अगले 3 सालों में 50 पार्क पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज्ड यानी चालू हो जाएंगे। और इसमें एक और बात भी है कि पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत होगा काम। ये औद्योगिक पार्क पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अनुरूप तैयार किए जा रहे हैं। इनका फोकस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, कुशल लास्ट माइल एक्सेस और इंटीग्रेटेड अंडरग्राउंड यूटिलिटी और कॉरिडोर्स पर होगा, ताकि मेंटेनेंस से जुड़ी सुविधाओं को कम किया जा सके। और सरकार चाहती है कि इन पार्कों में ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल रिसोर्स के उपयोग का भी प्रावधान किया जाए। श्रोताओं, तो यहाँ पर ग्रीन एनर्जी से समझने वाली बात यह है कि आजकल हम इस एनर्जी पे काफी कुछ फोकस कर रहे हैं और सरकार ने भी इस एनर्जी को प्रमोट करने के लिए काफी काम किया है। ग्रीन एनर्जी में आप सोलर है, पवन चक्की वाला है, ऐसी जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा के सोर्स अगर और ज्यादा विकसित होंगे तो औद्योगिक विकास में हमें अन्य साधनों पर, संसाधनों पर बिजली की निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी और इस प्रकार की एनर्जी से हमारे उद्योगों को 24 घंटे बिजली प्राप्त हुआ करेगी। आईटी के तहत NICDS संभालेगी इसकी जिम्मेदारी और सरकार द्वारा बताया गया है कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT के तहत नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NICDS इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संभालेगी। NICDS वर्तमान में 13 राज्यों में 20 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को लागू कर रही है और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के तहत 7 पीएम मित्रा पार्कों के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के रूप में भी काम किया जा रहा है। और सरकार ये कहना चाहती है कि इस योजना से क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले, इससे उत्पादन सप्लायर और सर्विस प्रोवाइडर को एक दूसरे के करीब काम करने का मौका मिले, जिससे घरेलू सप्लाई चेन मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। अब इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि दरअसल प्लग एंड प्ले मॉडल और NICDS क्या है। तो इसका मतलब सीधा सा यह है कि उद्योगों को जमीन, बिजली, पानी, सड़क और अन्य जरूरी मंजूरियों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि जब आप किसी राज्य में या राज्य के किसी भी जगह पर जब अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो वहाँ पर तकनीकी तौर पर पहले आपको इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वहाँ पर आपको इसके लिए काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ती है। तो सरकार चाहती है कि जहाँ पर भी ये काम हो वहाँ पर उद्योगों को जमीन, बिजली, पानी, सड़क और अन्य जरूरी सुविधाएं बिना किसी भटकाव के सीधे और आसान तरीकों से विधिवत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए, कागजी कार्रवाई को पूरा करते हुए उनको मिले, जिससे वे अपने उद्योगों को जल्दी से जल्दी स्थापित कर सके। और सरकार इसके लिए पहले से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देगी। कंपनियों को तो बस अपनी मशीनें लगानी है और उन्हें प्रोडक्शन शुरू करना है। इससे हम कह सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि भव्य योजना का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो आखिर में जाकर क्या चीजें हमारे सामने आ रही है कि सारी चीजें सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आपको उपलब्ध कराई जा रही, आपको तो बस वहां जाकर अपना काम करना है और उसके माध्यम से जो उद्योग है, जिस चीज को लेकर आप अपना उत्पादन करना चाहते हैं वहां पर उसको स्टेब्लिश करना है, बाकी काम सरकार द्वारा किया जाएगा। इसमें हम ये भी जानना चाहेंगे कि और आपको बताना चाहेंगे कि NICDS क्या है। दरअसल नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भारत में औद्योगिक गलियारों के विकास की देखरेख करने वाली एक एजेंसी है। यह देश की लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए काम करती है, क्योंकि इसके बिना आप अपना जो काम है वो आगे नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए बेहतर सुविधाएं होनी बहुत जरूरी है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में और इस सेक्टर को आगे बढ़ाने में हमारा जो लॉजिस्टिक का काम है वो बहुत सही तरीके से प्रॉपर ढंग से होता रहे, ताकि परिवहन के माध्यम से जो सामग्री का उत्पादन हो रहा है वो आगे समय पर पहुंच सके और उसकी सप्लाई बराबर बनी रहे। क्योंकि हम जान

0: जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्षमता जब बढ़ जाती है तो उत्पादन भी बढ़ता है, और उत्पादन बढ़ता है तो उसको आगे से आगे सप्लाई के लिए हमें तुरंत भेजना भी पड़ता है, और ये तभी हो पाता है कि जब हमारी लॉजिस्टिक सेवाएं यानी इसके परिवहन को लेकर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन या और सिस्टम है वो पूरी तरह से अपने आप में इस तरह काम करे कि जिससे उसको परिवहन के क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्याओं का काम सामना न करना पड़े और वह आगे से आगे अपने इस काम को बढ़ा सके। तो इस भव्य योजना के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि सरकार आने वाले समय में एक प्रकार से औद्योगिक हब को बढ़ावा देते हुए ऐसे पार्क विकसित करना चाहती है जिसके माध्यम से वह लोगों तक अपनी पहुंच बनाकर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको उपलब्ध कराने के बाद वह हमेशा वहां पर औद्योगिक परिचालन को बढ़ावा देते हुए देश की आर्थिक विकास में लोगों को आगे लाने का काम करती रहे, और इससे न केवल लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा वरन वहां के क्षेत्र में औद्योगिक प्रगति भी होगी, और जो हमारा विजन देश के विकसित भारत को आगे के रूप में देखने का है वह भी हमारा बहुत जल्दी होगा पूरा, क्योंकि आर्थिक रूप से समृद्धि देश की होना बहुत जरूरी है, और इससे न केवल प्रति व्यक्ति आय घरेलू आय बढ़ेगी वरन देश के प्रति व्यक्ति आय में भी इजाफा होगा, और धीरे धीरे हमारे जो औद्योगिक विकास है वो और भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। तो आज की इस विकास यात्रा में हमने चर्चा की भव्य योजना के बारे में जो कि केंद्र सरकार ने हाल ही में लॉन्च की, और देश भर में हम ऐसे 100 औद्योगिक पार्क बनाने की कार्रवाई को आगे अंजाम देने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यह योजना जब परवान चढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान राज्य, अन्य राज्य जो इसमें अपनी रुचि दिखा रहे हैं, वह औद्योगिक क्षेत्र में अपने आप में बहुत आगे उभर कर आएंगे, परिपक्व होंगे और हमारे देश के औद्योगिक विकास में एक नई दिशा प्रदान करने का काम करेंगे। तो आज की इस विकास यात्रा से मुझे शरद शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: आजादी का अमृत महोत्सव।

अभी आप सुन रहे थे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम विकास यात्रा। कार्यक्रम का निर्देशन किया था श्री रामजुलाल मीणा ने और वाचन स्वर थे शरद शर्मा की। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: राहत फतेह अली खान की आवाज़ में आपने सुना फिल्म नमस्ते लंदन का यह गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, FM 101.8 MHz पर। अब से थोड़ी देर में सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या।
1: अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
3: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
4: Frontier Models is spearheading global innovation.
1: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: The world seeks trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
4: And a scale that few can match.
1: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
6: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइन थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: सबको न्याय मिले भारत में, सबका हो सुनहरा कल। दिशा दिखाती सही राह और करे समस्या का भी हल।
9: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
10: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
11: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
10: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
12: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
13: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
10: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ा पंडरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की

वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी जैसलमेर के हम गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिल्म संगीत।

0: फिल्म द ग्रेट ग्रैम्बलर का यह गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज में।
1: वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम।
5: इतनी भी क्या जल्दी थी?
4: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
6: और ये
7: मेरी गुड़िया के नाम।
8: दादी, आपके नाम?
9: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
4: शुभ शुभ बोलो।
8: क्या
9: आरबीआई कहता है?
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
8: जी,
10: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
8: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
10: पर ये होगा कैसे?
8: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डेक्लेरेशन दे।
10: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो
8: ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
10: बस समझ गया।
8: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
9: आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म शक्ति का यह गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 MHz पर। लीजिए आप सुनिए राजस्थानी लोक संगीत।
1: Hey, no.

छोड़िए रे ओ सिला सरवर ना छोड़िए।

मासू बच्चो नहीं लखी बलगारे ओ मारा मोहन जी जारा रे ओ माने

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब थामा था तुम्हारा हाथ तो हमने तुम्हारी खुशियों को टांक लिया था अपने दामन में सितारों की तरह, और तुम्हारी उलझनों को अपना लिया था।

0: अब आप सुनेंगे श्याम शास्त्री की एक कृति जो राग पूर्वी कल्याणी तथा विलोम चापूताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to a composition of Shyama Shastri in the rag Purvi Kalyani set to Viloma Chaputal.

ಗಣಿಧರಿ ಗಣಿಧರಿ ನಮ ಗಮ ಸಾಯ ಗಣಿಧ

0: जी जी श्री राम अपने गायन का समापन त्यागराजा की एक कृति से कर रहे हैं जो राग शंकरावरणम तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जय श्री राम कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कंपोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग शंकराभरणम सेट टू आदिताल।

0: ये था तैयावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was तैयावर्तनम played on मृदंगम by विद्वान पीरवली जयभास्कर and on घटम by श्री यम चंद्रकांत।
0: इसी के साथ आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में श्री जे एस श्रीराम का गायन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर वीएसवी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri J.S. Sriram in the broadcast of Ravivasraya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on violin by V.S.P. Gayatri Sivani, on Ridangam by Vidwan Piravali Jayabhaskar and on Ghatam by Sri Yam Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasriya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के पेरिस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज देश में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन तक के इस आयोजन में भारतीय बिग टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इन्होंने 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्रा ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ते निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचेरस तालुका में भासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट NEET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
3: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startup, research, skilling and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI Governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at MSPI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
2: The Ministry of External Affairs conducted a special briefing in Nice on the outcomes of Prime Minister Modi's visit to Nice and his discussions with French President Emmanuel Macron. During the briefing, the Foreign Secretary Vikram Misri described the India-France Innovation Roadmap 2030 as a key outcome of the visit, aimed at deepening collaboration in critical and emerging technologies, artificial intelligence, startups, research and academic exchanges. He highlighted the creation of a joint India-France AI Working Group on AI Governance and the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Slovakia later tonight, marking the first ever visit by an Indian Prime Minister to the country. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini and hold talks with Slovakian Prime Minister Robert Fico in Bratislava. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said India's space economy is poised to grow from the current $8 to $9 billion to nearly $40 to $45 billion over the next decade. Addressing a press conference in New Delhi, the minister said this growth is driven by policy reforms, growing private participation, and a rapidly expanding innovation ecosystem. The National Testing Agency or NTA has released the admit cards for the NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical courses. Candidates can download the admit cards from NTA's official website, neet.nta.nic.in. The re-examination is scheduled to be held on the 21st of this month from 2 p.m. to 5:15 p.m. NTA has advised the candidates that they should verify their bank account details for refund before downloading the admit card. In Maharashtra, 8 devotees, including children, died after a pickup vehicle carrying them fell into a roadside well in Solapur district this afternoon. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis expressed grief at the tragic accident. He also announced an ex gratia of 5 lakh rupees to the families of those who died in the accident. The Criminal Investigation Department or CID today interrogated Trinamool Congress MP Abhishek Banerjee for over 9 hours for his alleged involvement in the signature forgery case of party MLAs. According to sources, the agency interrogated Trinamool Congress MLA Kunal Ghosh and Abhishek Banerjee face-to-face at Bhavani Bhavan, the CID headquarters in Kolkata. In ICC Women's T20 World Cup, India defeated Pakistan by 64 runs in a Group A match in Edgbaston in Birmingham. India set a target of 171 runs for arch rivals Pakistan. In reply, Pakistan were all out with 106 runs in 17 overs. Earlier, opting to bat first, India posted 174-6 in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
4: आकाशवाणी जैसलमेर के हम गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में रात के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सुबह भी संपन्न होती है। कल दिन की सभा में प्रातः 11:55 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।